FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 43 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक है अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करना। हमें लगता है कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है, वह हमसे आगे है या उसे हमसे अधिक सुख मिला है। यही सोच धीरे धीरे ईर्ष्या को जन्म देती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें दूसरे की पूरी कहानी दिखाई ही नहीं देती। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है, इसलिए किसी और की राह देखकर अपने मन को दुखी करने के बजाय अपनी राह पर ध्यान देना चाहिए। जो मिला है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। जब तुलना कम होती है तो संतोष बढ़ता है और संतोष में ही मन की सच्ची शांति छिपी है।

संसार में भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है और आस्था से सीधा कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर की भक्ति से शुरू हुआ दिन जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देता है।

ईश्वर के नाम का दिया कभी अल्प नहीं होता, इसलिए प्रभु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी अंधेरा, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं आएंगे।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहां आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: हैं।
1: सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम हिम गुंजन में सुबह 8:30 पर। प्रातः 9:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी चुग, और श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए उन्हें डायल करना होगा हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम में फिल्म संगीत का आनंद उठाइए सुबह 10:00 और 10:30 का समय है लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुरकार। सुबह 11:05 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम धरोहर, और 11:30 का समय है तराने मन के इस कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:50 पर, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 12:00 और दोपहर 12:30 पर बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा। विविध भारती के कार्यक्रम दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे।

0: भजन हम प्रसारित करेंगे शाम 5:10 पर और शाम 5:25 पर। कार्यक्रम युवा मंच प्रसारित किया जाएगा। आज का अंक है वीकली पल्स। शामी गजल, इस कार्यक्रम में गजलों का लुत्फ उठाइए। समय है शाम 6:05 और शाम 6:30 पर महिलाओं के लिए फोन इन कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:10 पर और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस हम प्रसारित करेंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार, इस कार्यक्रम में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता की फिल्मों के गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और रात्रि 10:00 डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई गेम्स 2026 का रिले प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह

0: कक्षों के रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूणी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from

सुबह सुहानी। श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सबका स्वागत है और आज का ये अंक आप सुनेंगे मेरे साथ यानी वंदना रैना के साथ। जी श्रोताओं, मौसम बिल्कुल गजब का हो चुका है। अक्टूबर की ये शुरुआत है, मॉनसून एक तरह से पूरी तरह हमें अलविदा कह चुका है, लेकिन ये हल्की हल्की गुलाबी ठंड। और सच कहें तो सुबह बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम खिड़की से बाहर धूलाधार की चोटियों पर सुबह की पहली सुनहरी किरणों को देखते हैं तो लगता है कि खूबसूरत दिन को सोकर नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर मुस्कुराकर और कुछ नया कर इंजॉय करना चाहिए। तो एक लंबी सांस लीजिए, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज कार्यक्रम सुबह सुहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियां, मनोरंजन के लिए गीत संगीत, और साथ ही हम इस सुबह को और पूरे दिन को मिलकर जोश से भर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे एक गुड न्यूज। जी श्रोताओ, आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम का ये अंक आप सुनेंगे सुबह 8 बजे तक। जी हाँ, पूरे 50 मिनट तक हम आपके साथ रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह को इस गुड न्यूज के बाद और भी खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ।

जी श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और अभी अभी आप सुन रहे थे सुबह की ताजगी से भरा हुआ ये खूबसूरत गीत। उम्मीद है इस गीत ने आपके दिल के तार छू लिए होंगे और आपके चेहरे पर जरूर से एक प्यारी सी मुस्कान आ गई होगी। और इस गीत के बाद, अब इस सुहाने सफर के बाद, अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का। जी श्रोताओ, किसी ने क्या खूब कहा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हों तो अपनी मेहनत को शोर मचाने दीजिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए, लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह छोड़िए, क्योंकि जब आपकी कामयाबी भूलेगी तो पूरी दुनिया सुनेगी। तो बस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अब सोच के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। हम भी आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। जी श्रोताओं, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन चलिए अब वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं, इतिहास की डायरी को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन यानी कि 4 अक्टूबर को देश और दुनिया में क्या खास हुआ था। तो पेश है आज का इतिहास। आज विशेष में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उस घटना के बारे में जो हमारे देश के गौरव की है। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1977 में देश के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी

योगदान अमूल्य है। और इसी के साथ खेल प्रेमियों के लिए एक मज़ेदार याद, साल 1996 में 4 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ मात्र 37 गेंदों में उस समय का सबसे तेज वनडे शतक जड़कर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। इसके साथ ही श्रोताओं, साल 1824 में मेक्सिको स्वतंत्र गणतंत्र देश बना था और आज ही के दिन वर्ष 2006 में जूलियन असांजे द्वारा विकीलीक्स की स्थापना की गई थी और महान जर्मन भौतिक विज्ञानी और क्वांटम थ्योरी के जनक मैक्स प्लैंक का निधन हुआ साल 1947 में और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1939 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी आर रामचंद्रन का जन्म हुआ। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब वापस से समय है आपके मनोरंजन का और आप सबके लिए प्ले करते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंदना रैना। दोस्तों, अभी अभी हमने बात की आज विशेष में कि आज के दिन यानी कि 4 अक्टूबर को दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा गया। और क्या आप जानते हैं कि इसी ऐतिहासिक दिन की वजह से आज से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा जश्न शुरू हो रहा है। जी हाँ, आज से शुरुआत हो रही है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की। आज यानी कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पूरी दुनिया अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक का जश्न मनाएगी। और 10 अक्टूबर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी यानी कि अंतरिक्ष कानून लागू हुआ था। जी श्रोताओं, जब हम छोटे थे तो रात को छत पर लेटकर तारों को देखते थे और सोचते थे कि वहाँ क्या होगा, लेकिन आज इंसानों ने अंतरिक्ष में अपनी बस्तियाँ बना ली हैं। मंगल ग्रह पर रोवर भेजे गए हैं और हमारा प्यारा भारत तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा चुका है। और अब हम इसरो के गगनयान मिशन से अपने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से जगाइए जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहता था। और आज कुछ पल आसमान की तरफ ज़रूर देखिएगा और सोचिएगा कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक बेहद खूबसूरत और छोटा सा हिस्सा है। और आपको ये भी बता दें कि साल 2026 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम है रॉकेट रेवोल्यूशन यानी कि रॉकेट क्रांति। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष उत्सव है जो मानव जीवन को बेहतर बनाने में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के योगदान की प्रशंसा के लिए मनाया जाता है।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी श्रोताओ, कार्यक्रम है सुबह सुहानी और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी श्रोताओ, 4 अक्टूबर को हम मनाते हैं पूरी दुनिया में विश्व पशु कल्याण दिवस, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है पशुओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके कल्याण के मानकों में सुधार करना और साथ ही इंसानों को बेजुबान जानवरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनाना। इसके साथ ही ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर पर्यावरण

संतुलन को बनाए रखने में पशु पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस दिन को पहली बार 24 मार्च 1925 को मनाया गया, लेकिन बाद में इस दिन को 4 अक्टूबर पर स्थानांतरित कर दिया गया। और साल 1931 में इटली के फ्लोरेंस में हुए अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण सम्मेलन में इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। साल 2026 के विश्व पशु कल्याण दिवस का थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। ये दिन हमें घरेलू पालतू जानवरों से लेकर जंगलों और समुद्र में रहने वाले सभी जीवों के प्रति दयालुता और जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाता है। और आज के दिन दुनिया भर में पशु कल्याण से जुड़ी हुई संस्थाएं और आम लोग कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। पशु संरक्षण और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता रैलियां और कार्यशालाएं की जाती हैं। आवारा और बेसहारा जानवरों को गोद लेने का अभियान भी चलाया जाता है। और इसके साथ ही बीमार और घायल जानवरों के इलाज के लिए शेल्टर होम और मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। और इसके साथ ही लोगों को प्रेरित किया जाता है शाकाहारी उत्पादों के लिए। और आप भी पशु शेल्टर होम की मदद करके जानवरों को खाना खिलाकर और पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाकर आधिकारिक विश्व पशु कल्याण दिवस वेबसाइट के माध्यम से इस वैश्विक अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और श्रोता, जानकारियां तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन अब समय है आपके मनोरंजन का।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी वंदना रैना के साथ, और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट पर अब हम पहुंच चुके हैं जहां हम बात करेंगे आज के मुख्य समाचारों की। तो श्रोताओं, भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो कॉल पर बात करके उनकी बहादुरी की तारीफ की है और इसके साथ ही उन्हें इजरायल आने का न्योता भी दिया है। आज सुबह सुबह इंडोनेशिया में 5.2 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज से सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान 4.6 लाख से अधिक छात्रों के खाते में 148 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर की है। अगर अपने प्रदेश हिमाचल की हम बात करें तो राज्य सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही 4,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में बागवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश की पहली बागवानी मोनोरेल के 300 मीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। इससे पहाड़ों पर फलों और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। और और भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2026 में, और इसके साथ ही साल 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 का आज समापन हो रहा है। इसमें पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर रहा है। और एशियन गेम मेंस क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने मेडल रेस में बड़ी छलांग भी लगाई है। और बात करते हैं आज के मौसम की, तो आज दिन भर आसमान पर साफ या आंशिक रूप से बादल रहने की उम्मीद है और बारिश की संभावना केवल 25% तक है। और श्रोताओं, एक बार फिर से आपका मनोरंजन करवाते हैं इस गीत के साथ इन समाचारों के बाद।

0: जी श्रोताओं, घड़ी की सुइयां बिल्कुल इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो चलते चलते एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार बात आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि एक औसतन इंसान अपने पूरे जीवन काल में लगभग 6 महीने सिर्फ रेड लाइट के ग्रीन होने के इंतज़ार में बिता देता है। जी हाँ, 6 महीने। तो अगली बार जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल में फंसे हों तो झुंझलाइए मत, बल्कि रेडियो चालू कीजिए, गुनगुनाइए और उस समय को भी इंजॉय कीजिए। तो आज के सुबह सुहानी कार्यक्रम में बस इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी इसी स्टेशन पर नई ऊर्जा और नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित गाड़ी चलाइए और बेजुबान जानवरों से प्यार बांटते रहिए। मैं हूँ वंदना रैना और आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे मेरे साथ। आप सभी को नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
1: सुबह सुहानी
0: कार्यक्रम। सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है।

0: और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के

0: मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
1: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमे हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पिज़िशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज

0: आज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ 4th स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक, पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centers of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smit Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan, trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony.

0: बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है। इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
4: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
5: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
3: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
6: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ, और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
7: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: लोकगीतों का कार्यक्रम हिम गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है अजय सिंह ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना लहरू राम सांख्यायन को, और कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इन संदेश के बाद।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
2: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
3: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
7: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
6: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
7: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
8: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिम गुंजन, और आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी चुग, और श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं विशेष के संबंध में। उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत, राकेश चंद का गाया हुआ।

कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट वंदना रैना। जी श्रोताओं, जब भी हम सेहत की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अक्सर उन बीमारियों पर चर्चा करने से हिचकिचाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। और एक ऐसी ही बीमारी है सर्वाइकल कैंसर। जी श्रोताओं, चुप्पी साधना किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो इसी सिलसिले में आज कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में।

0: और राहत की बात यह है कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिले तो इस कैंसर से पूरी तरह से बचा जा सकता है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी चुग। तो डॉक्टर मानसी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी चुग हूँ। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और एक विमेन हेल्थ एजुकेटर हूँ। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और कॉल्पोस्कोपी मेरा काम और रिसर्च का खास हिस्सा रहा है। विमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, प्रेगनेंसी हो, PCOS हो, इरेगुलर पीरियड्स, मीनोपॉज, सबके बारे में मैं जानकारी अपने इंस्टाग्राम के पेज जिसका नाम गाइनी ज्ञान है और फेसबुक पेज जो डॉक्टर मानसी चुग शर्मा के नाम से है, इन दोनों पर सब जानकारी शेयर करती हूँ, जिससे वुमेन कैन हैव अ क्लियर नॉलेज ऑफ व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ टू प्रिवेंट इट एंड टैकल इट। आप अभी मेरे इंस्टाग्राम पे पेज को ढूंढ सकते हैं गाइनी ज्ञान के नाम से। एंड बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच आकाशवाणी धर्मशाला। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इससे बचा कैसा जाता है, स्क्रीनिंग क्या होती है, आई थिंक ऑल वुमेन शुड नो दिस। आई cannot स्ट्रेस द importance ऑफ दिस टॉपिक। ये एक ऐसा कैंसर है जिसे बचा जा सकता है, बस सही जानकारी सही वक्त पर पहुंचनी चाहिए।
0: जी, जैसा कि श्रोताओं मानसी चुग डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी है और इसी विषय में जो उनका ज्ञान है उसे वो हमारे साथ आज साझा करेंगी, हमारी समस्याओं का निदान भी करेंगी। तो सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम ये बता दें कि वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो के टेलीफोन नंबर के माध्यम से, और हमारा फ़ोन नंबर है 0189222439। और डॉक्टर मानसी चुग स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और आप उनसे अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो डॉक्टर मानसी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और ये होता क्यों है।
1: देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स जो है वो बच्चादानी का मुंह होता है, यानी कि हमारा जो यूट्रस होता है उसके बाहर का हिस्सा, उसे सर्विक्स कहते हैं। और अगर उस पर एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करने लगे उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। आप सबको ये जानकर बहुत शौक होगा कि सर्वाइकल कैंसर इंडियन वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे कॉमन कैंसर है। हर साल इंडिया में अराउंड 1,27,000 न्यू केसेस आते हैं एंड अराउंड 80,000 वुमेन दे डाई बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इवन व्हेन इट इज़ समथिंग जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मोर देन 99% ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर्स दे आर कॉज्ड बाय हाई रिस्क HPV। HPV यानी कि एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बहुत एक आम सा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, पर कुछ केसेस में ये इन्फेक्टिव लीजन्स को टच करने से भी हो जाता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पर जो मोस्ट डेंजरस स्ट्रेन है, मोस्ट डेंजरस टाइप जिससे कैंसर होता है, वो है HPV 16 and 18।
0: जी, और डॉक्टर मानसी, जैसा कि हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी परिवार की धुरी होती हैं, सारा परिवार ही उनके चारों तरफ घूमता है, लेकिन कई बार वो अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो जाती हैं। तो ऐसी कौन से लक्षण हैं, कौन सी परेशानियां हैं जिनसे जिन्हें हमारी महिलाओं को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: देखिए, नॉर्मली ऐसे महिला को अगर HPV इन्फेक्शन होता है तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी,
1: इनफैक्ट दैट्स वाई सर्वाइकल कैंसर इज़ कॉल्ड अ साइलेंट किलर।
0: जी,
1: क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही लेट डेवलप होते हैं। जब आपको HPV इन्फेक्शन होता है, सर्वाइकल कैंसर उसके एक्चुअली 10 to 15 years बाद बनता है।
0: जी,
1: पर कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर आपको होते हैं तो उसके लिए आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं, गांठें गिरती हैं, अगर आपको पीरियड्स के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल कोई भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग रहती है, संबंध या रिलेशंस बनाने के बाद कोई ब्लीडिंग रहती है, रिलेशंस बनाने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट के निचले

0: हिस्से में कांस्टेंट पेन होता है, ऐसा दर्द होता है जो जा ही नहीं रहा।
1: जी
0: या अगर आपको मीनोपॉज हो चुका है, मतलब आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं और उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसा डिस्चार्ज आपको वजाइना से हो रहा है, ब्लड टिंज डिस्चार्ज जो नहीं जा रहा है, ये सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते
1: जी
0: हैं।
1: तो डॉक्टर मानसी, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या सर्वाइकल कैंसर का हमारी जो महिलाएं हैं उनकी उम्र से कोई संबंध है? छोटे बच्चों, जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, उनको भी ये हो सकता है या एक स्पेसिफिक एज के बाद ही ये कैंसर होता है?
0: देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो मोस्टली प्रेजेंट जो करता है वो विमेन में करता है 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज में।
1: जी
0: जैसे कि मैंने बताया, ये कैंसर जो है HPV वायरस की वजह से होता है। तो अगर महिला को फर्स्ट 30 ईयर्स में ये वायरस से इन्फेक्शन होता भी है, तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है जो ये वायरस को क्लियर कर देती है। पर अगर किसी कारणवश आपकी इम्यूनिटी नहीं है, आपकी बॉडी ने ये क्लियर नहीं किया, या आपसे वो HPV इन्फेक्शन नहीं पकड़ा गया, तो वो सर्वाइकल कैंसर में बदल जाता है। तो जो मोस्टली हम केसेस देखते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो हम 45 to 55 ईयर्स एज ग्रुप में देखते हैं।
1: जी और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि महिलाओं को बीमारियों के संबंध में बिल्कुल चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, तो हमारी
0: बिल्कुल
1: जो महिला श्रोता इस समय कार्यक्रम सुन रही हैं और उन्हें कोई समस्या है, कुछ वो जानकारी हासिल करना चाहती हैं डॉक्टर मानसी चुग से, तो वो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर डायल कर सकती हैं 01892224391। और डॉक्टर मानसी, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि जब महिलाओं में कोई भी थोड़ा सा अनयूजुअल उनको लगने लगे अपनी बॉडी में कि ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके अपनी परेशानी बतानी चाहिए? क्योंकि कई बार हम घर पे खुद भी इलाज कर लेते हैं या समझिए कि उन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो कब आपको लगता है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और किस उम्र में, अगर आप अपना बॉडी का टेस्ट करवाती हैं तो किस उम्र में आपको चेकअप करवाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के रिलेटेड?
0: देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर जो भी आपको सिम्टम्स पहले बताए,
1: जी
0: ये
1: जी
0: वाले सिम्टम्स अगर आपको कभी भी हो रहे हैं, तो आपको कहीं गूगल पे नहीं पढ़ना है, किसी से
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: पूछना
1: जी
0: है,
1: जी
0: आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है।
1: जी
0: क्योंकि गायनी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है।
1: जी
0: जब हम पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, पर वजाइनम एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे हमें सर्विक्स, यूट्रस के बारे में बहुत जानकारी
1: जी
0: होती है। तो इन सब चीज़ें, कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ज़रूरी है जाना अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास। पर ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसका जैसे मैंने बताया, सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं,
1: ठीक आते
0: तो
1: हैं।
0: इसका आपको सिम्टम्स शुरू होने की वेट नहीं करना। इसको जल्दी पकड़ा जा सकता है। अगर कुछ एबनॉर्मल प्री कैंसरस जो चेंजेस होते हैं, वो जल्दी पकड़े जा सकते हैं कुछ स्क्रीनिंग मेथड से। तो इसके लिए रेगुलर स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड है वो होता है HPV DNA, जो हम 30 ईयर्स की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं।
1: जी
0: क्योंकि जैसे मैंने बताया, 30 साल के पहले भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, पर बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है उसको
1: जी
0: क्लियर
1: जी
0: करने की। पर 30 साल के बाद आपको HPV DNA टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए। ये हर 5 साल के बाद करवाया जाता है। इस टेस्ट में सर्विक्स के ऊपर से, मुंह से, वहाँ से सेल्स लिए जाते हैं और जिनमें देखा जाता है कि HPV DNA का वायरस मौजूद है या नहीं।
1: डॉक्टर मानसी, एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
2: मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
2: मैं राजे गुरुंग, मैं धर्मशाला दाढ़ी से बोल रहा हूँ।
1: जी, और आपको आज का विषय पता है ना?
2: जी मैम,
1: जी,
2: सर्वाइकल
1: पूछिए,
2: के बारे
1: डॉक्टर
2: में बात।
1: साहिबा से प्रश्न पूछिए।
2: हाँ, डॉक्टर मानसी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मानसी जी, क्या स्त्री को, तो चलो आपने आपने लेडीज को तो बता दिया, जेंट्स को जैसे गले में सर्वाइकल है, पीठ में सर्वाइकल है, तो इसका क्या आपसे कॉन्टेक्ट करना हमारा संभव है कि नहीं है?
0: देखिए, जो स्त्री का सर्वाइकल कैंसर है वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल कैंसर, वो सेम नहीं है, वो दूसरा होता है। वो सर्विक्स की जो प्रॉब्लम होती है वो दूसरी होती है। ये स्त्री रोग है जो सर्वाइकल कैंसर का रोग है। तो
2: ओके,
0: इसके अपने हड्डी के लिए आपको हड्डी के डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा।
2: अच्छा, हड्डी के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है ना?
1: जी
2: जी
1: जी और कार्य,
2: जो
1: हाँ जी
2: टांडा में जो वर्मा जी हैं, वो भी

0: तो गाइनो के है ना वर्मा जी, शिमला से जो है।
1: जी ये तो उनको नहीं पता, ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जो बता रहे हैं उसके लिए आपको अस्थि रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना पड़ेगा। और डॉक्टर मानसी, हम बात कर रहे हैं लक्षणों की, जो आपने कहा कि नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते, लेकिन एक बात और आती है हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन की। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला का पर्सनल हाइजीन खराब है या वो हाइजीन पर इतना ध्यान नहीं देती है, तो क्या ये भी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है?
2: बिल्कुल, पुअर हाइजीन एक रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर का, जो हमारी स्टडीज़ में देखा गया है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स और भी होते हैं, सिर्फ एक पुअर हाइजीन की वजह से नहीं होगा,
1: जी
2: बट अगर साथ में दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज है, एज ऑफ जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपकी वो 20 साल से पहले की है,
1: जी
2: अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज रही हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आप
1: जी
2: HIV जैसी कंडीशन से सफ़र करते हैं, और अगर आप रिलेशंस बनाते हुए बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें पुअर हाइजीन इज़ ऑल्सो एनअदर रिस्क फैक्टर
1: जी
2: जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है।
1: जी और बार बार आप एक बात कर रही हैं और एक वर्ड यूज़ कर रही हैं, HPV, है ना? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए कि HPV होता क्या है, और क्या HPV और सर्वाइकल कैंसर, इनका आपस में कोई संबंध है?
2: जी बिल्कुल, HPV है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये
1: जी
2: एक आम वायरस है जो मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, पर ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं।
1: अच्छा
2: HPV देखिए एक वायरस है
1: जी
2: और सर्वाइकल कैंसर उसका एक नतीजा है। HPV के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पर उसमें 16 और HPV 18 ये बहुत डेंजरस कैंसर कॉजिंग टाइप्स होती हैं, और सर्वाइकल कैंसर जो है वो 99% HPV वायरस के वजह से ही होता है। पर ये है कि 30 साल के पहले पहले तक जो भी हमारे को HPV का एक्सपोजर होता है, उसमें से 80% जो HPV वायरस है वो बॉडी अपने आप क्लियर कर देती है बॉडी की इम्यूनिटी से। तो ऐसा नहीं है कि हर HPV इन्फेक्शन आगे जाके सर्वाइकल कैंसर ही बनेगा।
1: जी और डॉक्टर मानसी, कई बार मेनोपॉज महिलाओं को हो जाता है, फिर आफ्टर दैट उनके कुछ समय के बाद उनको फिर से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो क्या ये भी एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का?
2: बिल्कुल, अगर मीनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है,
1: जी
2: ये एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है। मीनोपॉज यानी अगर आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए हैं, पीरियड्स बंद हो गए हैं, जो कि एवरेज आपको 47 to 48 ईयर्स में बंद हो जाते हैं,
1: जी
2: उसके बाद अगर आपको कभी भी थोड़ा सा भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके ज़रूर दिखाना है। ये एक ऐसा सिम्टम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते,
1: जी
2: ये क्योंकि यूट्रस या सर्विक्स की प्रॉब्लम या कैंसर का सिम्टम हो सकता
1: हो
2: है।
1: सकता है। और डॉक्टर मानसी, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, कुछ संदेश हैं हमारे पास, पहले अपने श्रोताओं को वो सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके साथ बातचीत जारी रहेगी।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़

0: करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
0: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आरोग्य में। और आज कार्यक्रम में जिस विषय पर जानकारी दी जा रही है वो है सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी चुग। आप भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मिलाएं हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर जो है 01892224391। और हमारा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। और कार्यक्रम को वापिस से जारी रखते हैं। और डॉक्टर मानसी, अब हम बात करेंगे पैप स्मियर। ये एक हमने शब्द सुना है, जब भी कैंसर के किसी पेशेंट की बात आती है या हम उनसे चर्चा करते हैं, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
3: जी बिल्कुल, पैप स्मियर जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें सर्विक्स से सेल्स का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ताकि कुछ भी प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस जो हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाएं। ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, एक OPD टेस्ट है जिसमें लिटरली 5 मिनट लगते हैं। इसमें हम पेशेंट को लिटाकर एक वजाइनल स्पेक्युलम इंसर्ट करते हैं और सर्विक से यानी कि बच्चादानी के मुंह से ब्रश से सैंपल्स ले लेते हैं और इसको उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि कुछ प्री कैंसरस चेंजेस तो नहीं डेवलप हो रहे। इसमें 5 मिनट लगते हैं, हल्का सा डिस्कम्फर्ट बस महसूस होता है। महिलाओं को बहुत डर लगता है पैप स्मियर के नाम से, वो करवाना नहीं चाहती। तो मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि आप इससे डरिए मत। थोड़ा सा बस फिज़िकल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, कोई दर्द नहीं होता है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है करवाना। ये आप 25 साल की उम्र में ही शुरू कर देना चाहिए इसको करवाना, और इसे हर 3-3 साल के बाद करवाना चाहिए
2: जी।
3: और अगर इसके 30 साल की उम्र आपकी क्रॉस हो गई है तो बेटर रहता है कि आप पैप स्मियर के साथ HPV DNA भी, जिसे को टेस्टिंग बोलते हैं
2: जी,
3: वो साथ में करवाएं। और ये जो स्क्रीनिंग है सर्वाइकल कैंसर की, ये आपको 65 ईयर्स तक करवाना चाहिए, वो भी प्रोवाइडेड अगर आपकी लास्ट जो 2 स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आई हैं
2: जी। और एक श्रोता लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार जी।
4: नमस्कार मैम जी। नमस्ते डॉक्टर साहब।
3: नमस्ते
4: मैम, मैं खुशी बोल रही हूँ। मैम मेरे ना जो पीरियड्स हैं ना मैम, अब 10 दिन पहले आ जाते हैं, ये 3-4 महीने से हो रहा है मैम कि, और क्या बोलते हैं, जब पहला दिन होता है तब भी ब्लैक ब्लड आता है और लास्ट डे वाले दिन भी ऐसे ब्लैक ब्लड आता है मैम, इसका क्या रीज़न हो सकता है?
3: देखिए, इसमें ये हो सकता है कई बार अगर हमारा कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कई बार थायराइड ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी वजह से भी जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमारी बच्चादानी में कोई रसौली होती है, कोई पॉलिप होता है, उसकी वजह से भी पीरियड्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी, जो कि 30 दिन के बाद आने चाहिए, 28 से 30 दिन के बाद, वैसे ना आकर बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो इसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो आपके जांच, जो खून की जांचें हैं, हार्मोनल टेस्ट हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करवा पाए।
4: मैंने पहले भी करवाया था 6 महीने पहले, तो फिर उन्होंने एक किट दी थी, इन्फेक्शन की दवा सीरप दी थी, तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ा था, फिर अब ये 2-3 महीने से फिर से होने लगा ऐसे।
3: देखिए, कई बार बार बार अगर इन्फेक्शन रहता है, वजाइना का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स ऐसे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो नीचे से आपको चेक करेंगी कि क्या अभी इन्फेक्शन है, कोई वजाइनल से डिस्चार्ज हो रहा है, कोई पानी पड़ रहा है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स ऐसे आ रहे हैं, या इसका कोई और रीज़न है, कोई रसौली या कोई पॉलिप।
2: जी खुशी जी, और कुछ पूछना चाहेंगी?
4: जी,
2: और इसका बेटर यही है कि वो डॉक्टर के पास पर्सनली जाएं और फिर चेकअप करवाएं अपना। जी आपका जी प्रश्न पूछने के लिए आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर मानसी, अभी हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो अगर कब रिपोर्ट एबनॉर्मल आ जाए, थोड़ा रिपोर्ट में ऊपर नीचे हो, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस महिला को कैंसर हो गया है?
3: नहीं, जो पैप स्मीयर की रिपोर्ट होती है उसमें अलग अलग टाइप से आती है रिपोर्ट। उसमें पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है
2: जी,
3: उसको डायग्नोसिस बनाने के लिए आगे और टेस्ट होता है जिसे कॉल्पोस्कोपी कहते हैं, जो कि मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ होता है कि मैग्नीफाई करके हम सर्विक्स को देखते हैं और फिर सर्वाइकल बायोप्सी लेते हैं। क्योंकि जब वो बच्चादानी के मुंह से टुकड़े की जांच आती है, सर्वाइकल बायोप्सी आती है, उसको हम पैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, वो एक डायग्नोस्टिक चीज़ है जिससे हमें पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर बन चुका है या नहीं।
2: जी, और डॉक्टर मानसी, ये सर्वाइकल कैंसर अगर किसी महिला को हो जाए तो उसके जीवन पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका? क्योंकि कैंसर अपने आप में ही एक बहुत डरावना शब्द माना जाता है, तो इस बारे में कुछ रोशनी डालिए।
3: देखिए, अगर सर्वाइकल कैंसर जो है, जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना ही अच्छा होता है। अर्ली स्टेजेस में जो ये सर्वाइकल कैंसर है उसमें सर्जरी पॉसिबल होती है, और इनफैक्ट अगर कोई ऐसी महिला है जिसकी अभी तक फैमिली कंप्लीट नहीं है
2: जी,
3: तो अर्ली कैंसर में फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज भी हो सकती हैं, यानी कि उनमें बच्चादानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सर्विक्स के मुंह को, वजाइना को कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है। तो अर्ली कैंसर्स में फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज और ये पॉसिबल है, पर अगर जो आपका कैंसर है जब पकड़ा गया है और वो बहुत लेट एडवांस स्टेज में है, तो उस समय हमें रेडियो और कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, जिसका रिकवरी टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। सर्जरी में कुछ हफ्तों में आप रूटीन अपने काम पर वापस जा सकते हैं, रिलेशंस 4 to 6 weeks के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर एडवांस स्टेज का कैंसर निकला जिसमें आपको रेडियोथेरेपी करवानी पड़ी, कीमोथेरेपी करवानी पड़ी, तो उसकी रिकवरी में कुछ महीने लग सकते हैं। थकान और वीकनेस उसमें कॉमन होती है, कई बार रेडिएशन की वजह से जो योनी होती है, जो वजाइना होता है, उसमें बहुत ड्राइनेस हो जाती है। अगर जो अंडादानी है, जो ओवरीज हैं, वो अगर रेडिएशन फील्ड में आती है तो कई बार इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि उसके बाद आप बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि अंडा ही नहीं बन पाएगा अगर रेडिएशन से अंडादानी खराब हो गई है। और मीनोपॉज, अर्ली मीनोपॉज आ जाता है
2: जी।
3: तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि जितना जल्दी कैंसर पकड़ा जाए उतना अच्छा है, उतनी ही उसका रिकवरी भी फास्ट है
2: जी। और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या एक महिला सामान्य जीवन जी सकती है?
3: बिल्कुल जी सकती हैं। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, अर्ली स्टेजेस में ही पकड़ा जाए, तो उसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत अच्छा है। जितना जल्दी पकड़ा जाए सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है। जल्दी से जल्दी ही आप अपना ट्रीटमेंट करवा के नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं, आप अपना काम शुरू वापस शुरू कर सकते हैं
2: जी। और काफ़ी अच्छी जानकारी आप दे रही हैं कि इससे ये भी हमें पता चलता है कि अगर हम अपने लक्षणों को एकदम से पकड़ लें और उनको नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर के पास इमीजिएटली चले जाएं, तो हम काफ़ी बीमारियों के गंभीर रूप में आने से पहले ही हम उसका इलाज करवा सकते हैं जी। और डॉक्टर मानसी, एक बात और है, जब भी सर्वाइकल कैंसर की बात आती है तो उसी के साथ साथ आजकल हम HPV वैक्सीन, इसका नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी किशोरियों को प्रेरित कर रहा है कि वो इस वैक्सीन को लगवाएं, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे?
3: देखिए, सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। HPV वैक्सीनेशन और रेगुलर स्क्रीनिंग, जो अभी मैंने बताया पैप स्मीयर और HPV DNA से, ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने HPV वैक्सीनेशन लगवा लिया तो स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। HPV वैक्सीनेशन जो है उसका आइडियल टाइम होता है 9 से 14 साल की उम्र में
2: जी।
3: इस उम्र में जो आइडियल टाइम इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल डेब्यू से पहले का टाइम है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इस टाइम पर सिर्फ 2 ही डोजेस बहुत रहती हैं। पहली डोज दी जाती है और दूसरी डोज जो होती है वो 6 महीने के गैप पर दिया जाती है। इसको हमें इंट्रामस्कुलर हम देते हैं डेल्टॉइड।

0: हमने पहले बात करी कि प्रेगनेंसी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हुई थी आपकी, या मल्टीपल सेक्सुअल
1: जी
0: पार्टनर्स, ये
1: जी
0: कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं,
1: जी
0: तो उसके बाद भी 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप तक आप ये जो है वैक्सीन ले सकते हैं. इट इज़ अ शेयर्ड डिसीजन मेकिंग विद योर गायनाकोलॉजिस्ट. और वैक्सीन जो है ये आजकल जो आती है वो दो टाइप्स की आ रही है, मोस्टली क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट. क्वाड्रीवेलेंट माने कि जो है वो वैक्सीन प्रोटेक्शन देगी 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट. जैसे मैंने
1: जी
0: आपको बताया कि एचपीवी के बहुत सारे टाइप्स
1: जी
0: होते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो जो क्वाड्रीवेलेंट होती है वो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट होती है, और नोनावेलेंट यानी कि 9, वो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट होती है. तो डेफिनेटली जो नोनावेलेंट वैक्सीन है
1: जी
0: वो बेटर है. तो अगर आप लगवा सकते हैं तो नोनावेलेंट वैक्सीन लगवाना चाहिए. वो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन से, बट बेस्ट नोनावेलेंट वैक्सीन ही कवरेज देती है.
1: जी और डॉक्टर साहिबा, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो जैसे आपने एचपीवी वैक्सीन का बताया कि वो कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनको लगाई जाती है, तो माता पिता डर जाते हैं कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, तो ऐसे में आप उन माता पिता को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो इस वैक्सीन को अपनी बेटियों को लगवाएं?
0: देखिए, मेरा उन सब माता पिता से अनुरोध है जिनकी बेटियां हैं और उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है एचपीवी का, बहुत ज़रूरी वैक्सीन है. इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स माइनर से हैं कि जिस दिन आप वैक्सीन लगवा के आए हो सकता है उस इंजेक्शन जहां लगा वहां पे थोड़ी सी दर्द महसूस हो सकती है, थोड़ा सा माइल्ड फीवर हो सकता है. ये बस इतने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं.
1: जी
0: लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको एक इतनी बड़ी बीमारी से बचा रही है, सर्वाइकल कैंसर से, ये आपको बिल्कुल लगवानी चाहिए. और इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों को ये भी पूछते हुए सुना है मुझसे कि इसका कोई फर्टिलिटी पे इफेक्ट
1: जी
0: तो नहीं
1: ये
0: रहता.
1: मैं बिल्कुल अभी आपसे यही पूछना चाह रही, तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए आप।
0: हाँ देखिए, बहुत एक्सटेंसिवली स्टडीड है ये वैक्सीन, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इस वैक्सीन पे, तभी ये ऐसे मार्केट में आई है.
1: जी
0: तो इस वैक्सीन का फर्टिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो ऐसे अननेसेसरी फियर पैदा करता है
1: जी
0: जिसकी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाते हैं. और इनफैक्ट जो 9 से 14 साल के लड़के हैं
1: जी
0: उनको भी वैक्सीन, आप ये एचपीवी वैक्सीन
1: अच्छा
0: लगवा सकते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि ये जो एचपीवी इन वायरस जो है ये और भी बहुत टाइप के कैंसर्स करवाता है, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर, जो लड़कों में भी हो सकते हैं.
1: जी
0: तो लड़कों के लिए भी जो नोनावेलेंट एचपीवी वैक्सीन है वो उनको भी लगवाई जानी चाहिए.
1: जी और इसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इलाज एक बार पूरा करवा लिया किसी ने, माना किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर जो है वो निकल आया, उसने पूरा इलाज करवाया, लेकिन लोगों में ये भ्रांति भी है कि अगर आप इलाज करवा लोगे लेकिन कुछ समय बाद वो बीमारी वापस लौट कर ज़रूर आती है, तो ये कितना सच है कितना गलत है?
0: देखिए, जो रेकरेंस रेट है यानी कि बीमारी वापस आने का जो रेट है वो स्टेज पर डिपेंड करता है कि जब आपका सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ तो तब आप कौन सी स्टेज पर थे. जो अर्ली स्टेजेस में ही पकड़ा जाता है कैंसर और उसका इलाज कर दिया जाता है तो उसके रेकरेंस रेट जो है दोबारा वापस आने का रिस्क भी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर लेट स्टेजेस में कैंसर पकड़ा गया है. लगभग जो 70 to 80% जो रेकरेंस होता है वो पहले 2 साल में ही हो जाता है इलाज
1: जी
0: के,
1: जी
0: और ज़्यादातर बचा हुआ पहले 3 साल में. 5 साल के बाद रेकरेंस रेट दोबारा सर्वाइकल कैंसर का वापस आना बहुत कम देखा गया है.
1: जी
0: और एक मेरी सभी महिलाओं से एक मेरी विनती है कि अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए आपने इलाज लिया है, ट्रीटमेंट ले चुके हैं, अगर आप कोई सर्जरी करवा चुके हैं या भाप या कीमो रेडियोथेरेपी ले चुके हैं तो वहीं आपने रुक नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद का फॉलो अप भी उतना ही ज़रूरी है
1: जी
0: जितना ट्रीटमेंट ज़रूरी
1: कई
0: है.
1: बार हम फॉलोअप को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, है ना?
0: हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल, इसीलिए फॉलो अप ज़रूरी है क्योंकि रेकरेंस इसका होता है.
1: जी
0: तो फॉलो अप जो है अगर आपकी अर्ली स्टेजेस में ही पकड़ा गया है कैंसर
1: जी
0: तो आपको हर 3 महीने के बाद पहले 2 साल में फॉलो अप करवाना चाहिए. फॉलो अप यानी कि आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अपने सिम्टम्स अगर कोई आपको पहले वाले वापस आ रहे हैं और वो आपका नीचे से वजाइना से पर वजाइनल पर स्पेक्युलम चेक
1: जी
0: भी
1: जी
0: करेंगे आपको, ठीक है
1: जी
0: ना. पहले 2 साल में जो है वो हर 3 महीने के बाद जाना होता है उसके

0: बाद के जो 3 साल होते हैं उसमें हर 6 महीने में जाना होता है। और अगर आपका अर्ली कैंसर था तो आप उसके बाद रूटीन स्क्रीनिंग फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था HPV DNA करवा रहे हैं तो हर 5 साल बाद। पर अगर आपका जो कैंसर है वो बहुत ही एडवांस स्टेज में पकड़ा गया था तो आपको 3 महीने बाद जाना है पहले 2 साल, 6 महीने के बाद जाना है उसके अगले 3 साल, और उसके बाद आपने हर साल अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है।
1: जी, और डॉक्टर साहिबा एक बात और है कि जैसे बीमारी बड़ी है तो इसका इलाज लोगों को ये लगता है कि बहुत महंगा होगा, तो इसलिए भी वो अर्ली स्टेज पे नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि चलो कुछ भी खुद से इलाज करवा लिया या केमिस्ट से कई बार खुद ही लक्षण नज़रअंदाज कर दिए और मेडिसिन वगैरह ले ली, तो ये कितना महंगा है इस बारे में आप कुछ बताएंगी क्या?
0: देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत
1: आयुष्मान भारत योजना
0: जो है वो बिल्कुल चलती है। वो एलिजिबल है कि फैमिली को 5 लाख रुपए पर फैमिली का जो है उसमें कैशलेस कवर मिलता है। तो अगर आप गवर्नमेंट अस्पताल में इसका इलाज करवा रहे हैं तो आपका सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट जो है इस लिमिट के अंदर ही हो जाता है।
1: जी, और एक और बात हमने सुनी है कि कैंसर अनुवांशिक होता है, अब ये आप बताएंगे अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक होता है, मदर से बेटी को जाएगा, तो ये सच है क्या? क्योंकि लोगों में ना इस चीज़ को लेके भी बहुत बड़ी भ्रांति है, तो आप बताइए कि ये इस कितना सच है कितना झूठ है।
0: देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है वो जेनेटिक, खास तौर से जेनेटिक या हेरिडिटरी नहीं होता
1: जी।
0: ये वो हाई रिस्क HPV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक जीन नहीं है, जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें एक ब्रैका जीन होता है जो अगर मदर में हो तो वो डॉटर में हमें फिर चेक करवाना पड़ता है। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक जीन नहीं है, बट ये है कि अगर आपके किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, यानी कि अगर आपकी माँ में, मासी में, ऐसे जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें अगर सर्वाइकल कैंसर है तो आपको फिर तो ऑल द मोर रीज़न कि आपको अपनी जांच नियमित टाइम पे शुरू करवा देनी चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि कुछ लोगों की जो है वो बॉडी की इनहेरेंट इम्यूनिटी कम होती है कि वो इस वायरस को क्लियर नहीं कर पाती।
1: जी, तो आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जी, और एक और है कि जब आपके पास कोई महिला पेशेंट आती है और उसको ये बीमारी डिटेक्ट होती है तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, किस तरह उसे, क्योंकि इस वर्ड को सुनते ही महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं और एक मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है, परिवार के लिए भी और एज अ डॉक्टर आपके लिए भी, तो आप किस तरह से उन्हें समझाती हैं और इस बीमारी के इलाज के लिए प्रेरित करती हैं?
0: देखिए, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट ये किसी अपने पेशेंट को ये न्यूज़ बताना एक इन इट्सेल्फ इज़ अ बिग टास्क। किसी को ये बताना कि आपको कैंसर है तो ये महिला जो है बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाती हैं, है ना। कई लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन है कैंसर में
1: जी।
0: तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को भी ट्रीटमेंट का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसीलिए जो हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें काउंसलर हमेशा मौजूद होता है जो इन महिलाओं की काउंसलिंग करता है। और इसमें देखिए फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान है, महिला को सही टाइम पे डॉक्टर के पास लेके आना, फॉलोअप करवाना एक बार कैंसर पकड़ा गया है तो, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगता है इसमें, उसका बहुत मेजर रोल है। और बाकी कैंसर सर्वाइवर से भी मिलाया जाता है, उनसे उनको थोड़ा उससे उनका अकेलापन दूर होता है, उनको मोटिवेशन मिलती है
1: जी।
0: तो ये सब हमारे ट्रीटमेंट का, कैंसर के ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है।
1: जी जी, और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय डॉक्टर मानसी चुग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो जानकारी हमें दे रही हैं HPV वैक्सीन के बारे में और साथ ही सर्वाइकल कैंसर के बारे में। और अगर श्रोता भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391 और अपने श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स का हम बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं। और जब तक कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो डॉक्टर मानसी क्यों ना एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें हम?
0: बिल्कुल।

0: हेलो
1: नमस्कार जी,
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम राम स्वरूप शर्मा है जी।
0: जी,
1: मैं
0: और
1: घनौर ज्वालामुखी के पास से बोल
0: जी,
1: रहा हूँ।
0: आपको आज का विषय पता है?
1: हाँ, मुझे पता तो है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा क्वेश्चन।
0: जी, पूछिए अपना प्रश्न।
1: मेरी घरवाली को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो वो ट्रीटमेंट तो करवाया और टांडा मैंने जी,
0: जी
1: उनकी सर्जरी हो गई थी और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मतलब 2023 में हुआ था उनका सर्जरी और सारा ट्रीटमेंट 2024 में कम्प्लीट हो गया। रेडियोथेरेपी और फिर उसके साथ कीमोथेरेपी, ये सब कुछ हुआ उनका नहीं जी। अभी मैं डॉक्टर साहब से, ये डॉक्टर साहब नमस्कार जी,
0: जी नमस्कार।
1: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनका

0: ने पूछा था सर्जन से, उन्होंने कहा कि लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए हैं,
1: जी बिल्कुल
0: उसकी वजह से थोड़ी रहती है, बोले थोड़े दिन रहेगी ये, तो क्या इसका कोई है, कोई रिमूवल का मतलब हो सकता है ये?
1: देखिए, जो ये ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज होती हैं उसमें वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने सही बताया, लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। तो जब वो लिम्फ नोड्स निकल जाते हैं तो कई बार उसी साइड की जो बाजू है उसमें सोजिश आ जाती है, तो ये धीरे धीरे जो है ये अपने आप कम हो जाती है। और हाँ, और बाकी ये है कि आप बाजू को है जो थोड़ा सपोर्ट देके जब सोते टाइम पोस्चर थोड़ा ठीक रखिए, कि उसको के नीचे पिल्लो रख लिया, बाजू के नीचे थोड़ा एलिवेट करके रखिए।
0: हाँ जी, वो तो मैं रखवाता हूँ, साथ में स्टॉकिंग भी बनवाई हुई है मुझे, जिसमें वो भी डलवा देता हूँ, स्लिंग भी रखी हुई है, थोड़ा लटकन कम रहे उसकी बाजू की।
1: हाँ जी,
0: और
1: ये जी देखिए
0: मतलब वो
1: ब्रेस्ट
0: क्या ना,
1: कैंसर की
0: मुझे
1: सर। हाँ जी
0: मैं तो मतलब ना उसका फॉलोअप तो लेता हूँ, हर 3 महीने के बाद जाता हूँ डॉक्टर अपूर्वा व्यास जी के पास में जी, तो
1: हाँ
0: वो देख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ही था बताया तो नहीं, मेमोग्राफी कराती है वो साल में एक बार,
1: जी
0: अभी नवंबर में ड्यू है, उस तरह के रेकरेंस के कोई ऐसे चांसेस तो नहीं? वैसे तो बिल्कुल ही माइनर था उनका ना, पर हमने वो निकलवा दिया था, रिमूव करवा दिया था ब्रेस्ट ना।
1: हाँ देखिए, अगर पूरी कंप्लीट सर्जरी हो गई है, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी भी मिल गया है, तो रेकरेंस का चांसेस कम रहता है। पर ये है कि आपको हर साल फॉलोअप उनके ज़रूर करवाना है, जिसमें फॉलोअप में उनका एग्जामिनेशन होगा और मैमोग्राफी होगी, वो आपने मिस नहीं करनी।
0: नहीं, वो तो ट्राई मंथली में जाता हूँ ना ये रूटीन चेकअप के लिए,
1: हाँ जी हाँ
0: वो तो
1: जी
0: बिल्कुल उनकी निगरानी में ही है वो तो।
1: हाँ जी ठीक है।
0: और कोई विशेष कोई परहेज वगैरह तो नहीं होता ना जी?
1: नहीं जी, और परहेज नहीं है। बाकी ये है कि जिस उम्र में उनको डिटेक्ट हुआ है, अगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली उम्र में डिटेक्ट हुआ है, तो अगर आपके कोई डॉटर्स हैं तो उनको भी जेनेटिक टेस्ट अपना करवाना चाहिए।
0: इसलिए रनिंग 65th ना जी, तो
1: जी
0: जब 62 साल में हुआ था शायद उनको, और बेटी है मेरी एक, तो उनको बोलूंगा है ना, तो चेक करवाते रहना।
1: हाँ ठीक है ठीक है जी। हाँ,
0: और
1: उनका भी आप चेकअप
0: सेकंड,
1: करवाते रहिए।
0: थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
1: ओके जी,
0: जी
1: धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। और बाकी श्रोता भी जानकारी हासिल कर सकते हैं डॉक्टर मानसी चुग से, और उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। और डॉक्टर साहब, आप ये जानना चाहेंगे कि इलाज के बाद जो है वो खान पान कैसा रहता है, लाइफस्टाइल कैसा रहता है एक कैंसर पेशेंट का? देखिए, पहले तो कैंसर से बचने के लिए भी मैं कुछ
0: जी
1: लाइफस्टाइल
0: जी बताइए।
1: कुछ चेंजेस बताना चाहूँगी। एक तो अगर कोई भी महिलाएं हैं जो स्मोकिंग करती हैं, तो वो बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर दें, क्योंकि जो स्मोकिंग होता है उसमें एचपीवी वायरस जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है बॉडी में, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है उसको वायरस को क्लियर करने के लिए। और ये सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग नहीं है कि अगर आप खुद स्मोक कर रहे हैं, अगर ये पैसिव स्मोकिंग का भी इसमें रोल है कि अगर आपके सामने भी कोई स्मोकिंग कर
0: जी
1: रहा है
0: जी
1: उसके, वो उसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, तो वो भी आपको बंद करना है। और अपना वैक्सीनेशन जैसे मैंने बताया वो ज़रूर लगवाना है, अगर आप उस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं जो अभी हमने बताए उसमें के लिए आप एलिजिबल हैं, तो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाइए और रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करवाइए पैप स्मीयर के थ्रू या एचपीवी टेस्ट डीएनए के थ्रू। और रिलेशंस बनाते टाइम अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है एचपीवी वायरस का जो एक्सपोजर है वो भी कम होता है।
0: जी
1: अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशंस हैं, कोई अगर आपका खून कम रहता है, अनीमिया है, अगर आप एचआईवी से सफ़र कर रही हैं, तो उस सब का इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस है कि हेल्दी रहना, रोज़ अपने आपको आप फिज़िकली एक्टिव रखिए, लगभग रोज़ 30 मिनट की मॉडरेट सी हल्की सी वॉक ज़रूरी
0: वॉकिंग
1: है,
0: जी
1: 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, अपना वज़न जो है वो हेल्दी रेंज में रखिए, अल्कोहल पे लिमिट रखिए। स्ट्रेस भी देखिए एक बहुत ज़रूरी इसका हिस्सा रहता है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस से भी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और जो बाकी डाइटरी चेंजेस हैं उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाइए, खाइए फल सब्जियां।

0: नट्स, दाल, ये सब लीजिए। जो प्रोसेस्ड फूड है, घी, बटर, जो ऐसा नमकीन
1: जी
0: वाला जो ये खाना है, शौक से खाते हैं सब, ये आप थोड़ा कम करिए। और अपने डॉक्टर्स के साथ मिलके, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, मल्टी वाइटमिन सप्लीमेंटेशन ज़रूर रखिए।
1: जी
0: और आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज अगर आप हैं, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी
1: जी
0: है।
1: और डॉक्टर मानसी, जो क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होने ही वाला है, तो आपसे चलते चलते बस यही जानना चाहेंगे कि इस बीमारी से बचाव के लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर उन कुछ कैंसर्स में से है जिन्हें लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर हमारी नियमित तरीके से रेगुलर स्क्रीनिंग करवाई जाए, एचपीवी वैक्सीनेशन दिलवाया जाए। मैं इन दो चीज़ों पे बार बार, मैं ये
1: जी
0: वर्ड्स
1: जी
0: बोल रही हूँ, बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जो नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं दिन में मेरे पास, मेरी ओपीडी में, तो मैं आपको बताऊंगी कि 90 to 95% जो महिलाएं होती हैं उनको वैक्सीनेशन और पैप्समियर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए ये आज का सेशन बड़ा ज़रूरी था। और बाकी कोई भी अगर आपके वार्निंग साइंस हैं, जो भी सिम्टम्स हमने बात करे, जो अनियमित तरीके से खून पड़ना और वो सब सिम्टम्स की हमने बात करी, तो उसको आप लेके घर पे ना बैठे रहिए। कि महिलाएं सोचती हैं कि जी ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन इंतज़ार कर लेते हैं,
1: जी
0: ठीक हो जाएगा, तो वो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है। और ये है कि इस सब की जानकारी मैं अपने पेज का, जो मैंने बताया आपको, इंस्टाग्राम के पेज पे डालती रहती हूँ, जिसका नाम गाइनी ज्ञान है, वो ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड दैट्स माई मैसेज।
1: जी डॉक्टर मानसी चुग, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: और श्रोता, हम भी यही कहेंगे, सेहत से बढ़कर इस दुनिया में कोई मुकाम नहीं होता। जो खुद का ख्याल न रखे उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकता बनाइए। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग हमें मिला सुनील कुमार से। अब वंदना रैना को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही जागरूक रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:50 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 136 निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी। एशियन गेम्स 2026 का आज होने जा रहा समापन। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर। मुख्यमंत्री सहारा योजना। गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनी संबल। और राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा आयोजित। लोक परंपराओं का दिखेगा अनूठा संगम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2026 में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के दौरान निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। स्वीकृति आदेश के अनुसार प्रदेश की 136 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। प्रति पंचायत 25 लाख रुपए की दर से ये अनुदान दिया जाएगा। सबसे अधिक 42 निर्विरोध ग्राम पंचायतें शिमला जिला में चयनित हुई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सबसे अधिक 42 निर्विरोध ग्राम पंचायतें शिमला जिला में चयनित हुई है, जिन्हें कुल 10.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके बाद सिरमौर जिला की 27 पंचायतों के लिए 6.75 करोड़ रुपए की राशि, किन्नौर की 18 पंचायतों के लिए 4.5 करोड़, लाहौल स्पीति की 17 पंचायतों के लिए 4.25 करोड़, कांगड़ा की

0: दो पंचायतों के लिए 50 लाख, सोलन की 13 पंचायतों के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह कुल्लू की 5, मंडी की 5 और ऊना की 5 निर्विरोध पंचायतों के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि मिलेगी। चंबा की 1 निर्विरोध पंचायत के लिए 25 लाख रुपए तथा बिलासपुर की 1 पंचायत के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आदेश में किन्नौर के लिए कोई निर्विरोध चयनित ग्राम पंचायत दर्ज नहीं है। संबंधित ग्राम पंचायतों को यह प्रोत्साहन अनुदान विभाग की ओर से 28 सितम्बर को जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही खर्च करना होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित मनाली प्रवास को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त अमित कुमार ने कल एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उपायुक्त ने यातायात के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए सुबह 11:30 बजे NGT बैरियर पर मनाली की ओर जाने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को रोका जाएगा। दोपहर 12:15 बजे सासे मेन गेट के ऊपरी हिस्से पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। शाम 8 बजे से मनाली से लाहौल स्पीति और लाहौल स्पीति से मनाली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को ग्राउंड होकर चलाया जाएगा। ये डायवर्जन 7 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक लागू रहेगा। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे सिसु अटल टनल नॉर्थ पोर्टल ब्रिज पर वाहनों को नियंत्रित किया जाएगा। लाहौल स्पीति से मनाली आने वाले वाहनों को केवल रोहतांग पास से आने की अनुमति होगी। सुबह 7 बजे NGT बैरियर पर लाहौल स्पीति की ओर जाने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को रोका जाएगा। सुबह 8 बजे लॉगहट चौक, मनालसु कर्व, मुख्य चौक, रामबाग, मिशन अस्पताल, ओल्ड रोड ब्रिज, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ रोड, नेहरू कुंड ब्रिज, पलचान ब्रिज और पलचान चौक, रोहतांग रोड समेत कई स्थानों पर नाके सक्रिय किए जाएंगे। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू धांडा होंगी। वे तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलंग में तैनात हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह ने नाहन में आयोजित हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के 200 यार्ड इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सुरजीत सिंह का चयन ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट यानी AIPDM के लिए भी हुआ है। उनकी इस सफलता पर लाहौल स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी महला ने उन्हें बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शेष समाचारों में, मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संबल प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर माह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि दवाइयों और देखभाल के खर्च में मदद कर रही है। सरकाघाट की तहसील कल्याण अधिकारी पूनम शर्मा ने बताया कि उपमंडल में योजना के कुल 104 लाभार्थी पंजीकृत हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारे मंडी जिला संवाददाता से।
5: मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनी है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में डेबिट माध्यम से प्रदान की जा रही है। सरकाघाट के कंडोल निवासी रतन सिंह की पत्नी कमला देवी कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि दवाइयां और देखभाल

0: के खर्च में मदद कर रही है। वहीं नबाही गांव की सरोज और लंगेहड़ के हुकमचंद की पक्षाघात से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है। तहसील कल्याण अधिकारी सरकाघाट पूनम शर्मा के अनुसार उपमंडल में योजना के कुल 104 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें बलदवाड़ा तहसील के 56 तथा सरकाघाट तहसील के 48 लाभार्थी शामिल हैं। योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: सोलन में छिपी हुई प्रतिभाओं को गायन और नृत्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय रफी नाइट का शुभारंभ कल देर सायं हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और अपनी गायन व नृत्य प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। रफी नाइट के दौरान युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अपनी कला को मंच पर प्रस्तुत करने के साथ साथ आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर भी मिल रहा है। रफी नाइट के संयोजक तरसेम भारती ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सोलन और आसपास के क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव इस वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने की अध्यक्षता में कल एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन स्थल और विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: 4 दिवसीय महोत्सव में किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक संगीत, स्थानीय कला और हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान किन्नौरी लोक संस्कृति पर आधारित शहनाई, विभिन्न वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और लोक गायन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। इस वर्ष मिस किन्नौर के साथ मिस्टर किन्नौर प्रतियोगिता आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कुकिंग प्रतियोगिता भी होगी। वहीं स्थानीय कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक अवसर देने पर भी जोर दिया गया है। युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए महोत्सव के दौरान एंटी चिटा मैराथन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, हिमाचल में 6 महीने के भीतर 4,000 और शिक्षक होंगे भर्ती। पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं, 6 माह में 4,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनेगी नीति। जबकि दैनिक जागरण के मुताबिक 3 वर्ष में 10,000 शिक्षक किए भर्ती, 6 माह में 4,000 और रखेंगे। दैनिक भास्कर ने एक खबर को सुर्खी दी है, छुट्टियों में पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख, 24 घंटे में 2,05,000 पर्यटक पहुंचे। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, केरल से 14.5 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली का समझौता। दिव्य हिमाचल के मुताबिक निर्विरोध चुनी गई 136 पंचायतों को 34 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, भारत में 1987 से पहले जन्मा नेपाल मूल का व्यक्ति भारतीय, देना होगा पासपोर्ट। हिमाचल दस्तक का कहना है, भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति देश का नागरिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 136 निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी। एशियन गेम्स 2026 का आज होने जा रहा समापन, भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर। मुख्यमंत्री सहारा योजना, गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनी संबल। और राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक होगा आयोजित, लोक परंपराओं का दिखेगा अनूठा संगम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम गीतों का कारवा लेकर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण, और सभी श्रोताओं को हमारा सुप्रीम नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मदहोशी फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। उदित नारायण साधना सरगम की आवाजें रूप कुमार राठौर साथ में और शकील आजमी के बोल हैं। तो सुनिए श्रोताओं ये बेहतरीन संगीत।

0: खुद ब खुद बन जावे डेड बॉडी करे, फिर भी दिखाते हैं खुद को मुझसे बड़े। अगर मैं हूँ पेड़ तो मेरी यार मेरे जड़े, अगर मैं हूँ गलत।
1: यार ये टू फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, अरिजीत सिंह की आवाज, बोल और संगीत मनन भारद्वाज का।

प्यार है तो है इस फिल्म का गीत अब हमारे श्रोताओं के लिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की आवाज और इनका साथ दे रही हैं इशिता बोल धीरज कुमार की।

माई नेम इज खान इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। राहत फतेह अली खान और रिचा शर्मा की आवाजी थी। संगीत था शंकर एहसान लोई का।

धड़क टू फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। दर्शन रावल की आवाज, संगीत रोचक कोहली का। गीतों का कारवा ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

सैयारा फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कार्रवाई कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण को इजाजत और श्रोताओं मिलते हैं कुछ ही क्षणों में पुनः आपसे अगले कार्यक्रम में।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर। कार्यक्रम पहाड़ों के सुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पुनः हाजिर है आप सभी की रेडी दोस्त प्रवीण और सभी श्रोताओं को हमारा सुप्रीम नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं कर्नेल राणा की आवाज में गाई माता की इस भेंट के साथ।

पहाड़ों के सूर्य कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति निम्मो चौधरी की आवाज में।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: पहाड़ों के सूर्य कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ। और कार्यक्रम में अब हमने शामिल किया है विनोद सोनी की आवाज में यह लोकगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2026 में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के दौरान निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। स्वीकृति आदेश के अनुसार प्रदेश की 136 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति पंचायत 25 लाख रुपए की दर से ये अनुदान दिया जाएगा। सबसे अधिक 42 ग्राम पंचायतों को शिमला जिला से निर्विरोध चयनित हुई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सबसे अधिक 42 निर्विरोध ग्राम पंचायतें शिमला जिला में चयनित हुई है, जिन्हें कुल 10.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके बाद सिरमौर जिला की 27 पंचायतों के लिए 6.75 करोड़ रुपए की राशि, किन्नौर की 18 पंचायतों के लिए 4.5 करोड़, लाहौल स्पीति की 17 पंचायतों के लिए 4.25 करोड़, कांगड़ा की 2 पंचायतों के लिए 50 लाख, सोलन की 13 पंचायतों के लिए 3.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह कुल्लू की 5, मंडी की 5 और ऊना की 5 निर्विरोध पंचायतों के लिए 1.25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। चंबा की 1 निर्विरोध पंचायत के लिए 25 लाख रुपए तथा बिलासपुर की 1 पंचायत के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आदेश में किन्नौर के लिए कोई निर्विरोध चयनित ग्राम पंचायत दर्ज नहीं है। संबंधित ग्राम पंचायतों को यह प्रोत्साहन अनुदान विभाग की ओर से 28 सितंबर को जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही खर्च करना होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित मनाली प्रवास को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त अमित कुमार ने कल एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उपायुक्त ने यातायात के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए सुबह 11:30 बजे NGT बैरियर पर मनाली की ओर जाने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को रोका जाएगा। दोपहर 12:15 बजे सासे मेन गेट के ऊपरी हिस्से पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। शाम 8 बजे से मनाली से लाहौल स्पीति और लाहौल स्पीति से मनाली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को ग्राउंड होकर चलाया जाएगा। यह बदलाव 7 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक लागू रहेगा। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे सिसु अटल टनल नॉर्थ पोर्टल ब्रिज पर वाहनों को नियंत्रित किया जाएगा। लाहौल स्पीति से मनाली आने वाले वाहनों को केवल रोहतांग पास से आने की अनुमति होगी। सुबह 7 बजे NGT बैरियर पर लाहौल स्पीति की ओर जाने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को रोका जाएगा। सुबह 8 बजे लॉगहट चौक, मनालसु कर्व, मुख्य चौक रामबाग, मिशन अस्पताल, ओल्ड ब्रिज, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ रोड, नेहरू कुंड ब्रिज, पलचान ब्रिज और पलचान चौक, रोहतांग रोड समेत कई स्थानों पर नाके सक्रिय किए जाएंगे। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव इस वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन स्थल और विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। 4 दिवसीय महोत्सव में किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक संगीत, स्थानीय कला और हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए महोत्सव के दौरान एंटी चिट्टा मैराथन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएँ भी करवाई जाएंगी। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर माह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि दवाइयों और देखभाल के खर्च पर मदद कर रही है। सरकाघाट की तहसील कल्याण अधिकारी पूनम शर्मा ने बताया कि उपमंडल में योजना के कुल 104 लाभार्थी पंजीकृत है। विस्तृत ब्यौरा हमारे मंडी जिला संवाददाता से।
2: मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनी है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में डेबिट माध्यम से प्रदान की जा रही है। सरकाघाट के कंडोल निवासी रतन सिंह की पत्नी कमला देवी कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि दवाइयां और देखभाल के खर्च में मदद कर रही है। वहीं नबाही गांव की सरोज और लंगेहड़ के हुकमचंद की पक्षाघात से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है। तहसील कल्याण अधिकारी सरकाघाट पूनम शर्मा के अनुसार उपमंडल में योजना के कुल 104 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें बलदवाड़ा तहसील के 56 तथा सरकाघाट तहसील के 48 लाभार्थी शामिल हैं। योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरोहर।

0: शिव नगरी बैजनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोले शंकर की तपोस्थली महाकाल। भोले शंकर और उनके परम भक्त जालंधर की भक्ति की कलयुग में जीती जागती मिसाल है। पुराणों में जिक्र किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे पांडसुआ गांव का नाम महाकाल जालंधर और महाकाल अर्थात शिव शंकर के युद्ध के पश्चात पड़ा। भगवान भोले शंकर इस गांव में स्वयं भूलिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से शिव की यह तपोस्थली महाकाल के नाम से विख्यात हुई। ऐसी मान्यता है कि महाकाल जहां पर भोले शंकर स्वयं भूलिंग के रूप में विराजमान हैं, उस स्थान पर जालंधर दैत्य की नाभि गिरी है। जालंधर का सिर मुकुटनाथ संसाल में गिरा है।
1: जन श्रुति है कि महाकाल मंदिर का निर्माण पांडव काल में किया गया था और 1905 में आया विनाशकारी भूकंप भी मंदिर को तहस नहस नहीं कर पाया था। मान्यता है कि कालांतर से ही भगवान शनि अगस्त और सितंबर यानी कि भाद्र महीने में अपने गुरु से महाकाल में मिलने आते हैं। भाद्र महीने में हर शनिवार को मेले का आयोजन होता है। शिव पुराण के अनुसार महाकाल की परिक्रमा में 4 जल के कुंड आते हैं, जिसमें ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड और सती कुंड शामिल हैं। इन कुंडों की विशेषता ये है कि इनके जल का स्वाद भी अलग अलग है और इन कुंडों में स्नान का अपना अपना महत्व है। वर्तमान समय में महाकाल में इन 4 कुंडों का पानी एक तालाब में इकट्ठा किया गया है और मेलों में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने कष्टों का निवारण करने के लिए इस तालाब में स्नान करते हैं। इस तालाब में स्नान करने का विशेष महत्व है।

0: شکم کرد در بیری که لاش شکرب کرد شول داری تربولاری چم چم چنم
1: मान्यता है कि 70 के दशक से पहले शमशान घाट और मंदिर साथ होने के कारण श्रद्धालु महाकाल के अंदर जाने से कतराते थे। 70 के दशक में स्वामी रामानंद स्वामी आंध्र प्रदेश से महाकाल में आए और स्वामी रामानंद ने मंदिर के स्थापित शमशान घाट को मंदिर के बाहर स्थापित करवाया था। स्वामी रामानंद 1970 से 1991 तक महाकाल में रहे और 1991 में तपस्या करने के लिए मुकुटनाथ के जंगलों में चले गए। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं महाकाल मंदिर के राम पंडित।
2: कालांतर में जालंधर नाम के एक दैत्य ने यहाँ पर तप किया शिव जी का, और शिव जी से उसको वरदान मिल गया कि तुझे काल नहीं मारेगा, मृत्यु नहीं होगी। वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं ऋषियों को उस जमाने में तंग किया, शिव उसका वध करने के लिए महाकाल बन गए, तभी से ये क्षेत्र का नाम महाकाल से जाना जाता है। और महाकाल की परिक्रमा में चार जल के कुंड हैं, जिसको ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड और सती कुंड परिक्रमा में आते हैं। और शनिदेव का महाकाल में बहुत महत्व है। आदिकाल से शनि का ये तप स्थान माना जाता है, शनि महाकाल का शिष्य है और ये शिष्य का गुरु का संसार में पहला मंदिर है शनि और महाकाल का। तो जलंधर दैत्य की जो पत्नी वृंदा, वृंदा जो तुलसी है उसके साथ हुई थी। तो अभी भाद्रपद मास में शनि अपने गुरु महाकाल को मिलने के लिए आते हैं और इसी उपलक्ष पर यहाँ मेले का आयोजन होता है शनिवारों में भाद्रपद मास में अगस्त सितंबर में। तो जब शनिदेव अपने गुरु को मिलने के लिए यहाँ आते हैं तो स्वाभाविक है जो शनि से स्थायी हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर शनि शांति के लिए आते हैं। और शनि की जो प्रसन्नता हेतु चीजें, शनि का मालिश तेल चढ़ाना और तिल मा तेल, काला कपड़ा, छाता वगैरह, ये सारी चीजें शनि शांति के लिए लोग यहाँ चढ़ाते हैं। लेकिन कालांतर में ये स्थान केवल साधकों के, जो अघोरी लोग हैं, अघोरी साधक हैं, उनके अंदर हुआ करता था। वो आम जनता का यहाँ पर आना मना था। स्वामी रामानंद जी ने, जो कि 1970 में यहाँ आए थे, उन्होंने इस स्थान को आम जनता के लिए खोला। तो अघोरियों के जंगल से स्थान को आजाद कराया गया, अघोरियों की समाधियां हो गई और अब ये आम जनता के लिए खोल दिया गया महाकाल जी को। तो अभी सभी लोग यहाँ पर स्वतंत्रता से दर्शन कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय महाकाल।
1: मान्यता तो यह भी है कि 70 के दशक से पहले यहाँ पर हर रोज एक शव जलाया जाता था और जलाने से पहले शव को महाकाल में स्वयंभू रूप में विराजमान भगवान शिव के दर्शन कराए जाते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ एक अंतराल के बाद शमशान बनने से महाकाल मंदिर के इस पवित्र तीर्थ स्थल में हर रोज शव जलाने की परंपरा भी समाप्त हो गई। मगर अब भी 52 गांवों में बसने वाले भगवान भोलेनाथ के असंख्य भक्तों की अंतिम इच्छा यही होती है कि मरण उपरांत उनके देह को इसी तीर्थ स्थल में जलाया जाए।
3: शिव तंत्र की दृष्टि से महाकाल के मंदिर में अघोरी बाबा आदिकाल से ही तपस्या करते रहे हैं, क्योंकि जालंधर ने महाकाल से वर मांगा था कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से महाकाल में पूजा पाठ साधना करेगा, महाकाल में उसके कष्टों का अंत होगा और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जनश्रुति है कि कालांतर से ही महाकाल में काली और महादेव का वास रहा है।
1: शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान इंद्र और देव गुरु बृहस्पति भ्रमण करते हुए शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर चले गए तो भोले शंकर को इंद्र और देव गुरु बृहस्पति की भक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। शिव ने ऋषि का वेश धारण किया और रास्ते में बैठ गए। इतने में देव गुरु और इंद्र

0: वहां पर पहुंच गए और शिव से पूछा कि हे मुनि, आप कौन हैं और रास्ते में क्यों बैठे हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए और हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। शिव उनकी बात पर मौन रहे। अपनी बात का उत्तर न मिलते देख इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित मुद्रा में कहा, बताते हो या मैं अपने वज्र से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। भगवान भोले शंकर इंद्र की इस बात से बहुत क्रोधित हुए और वे अपने असली रूप में आ गए। जैसे ही शिव इंद्र पर प्रहार करने लगे तब देवगुरु बृहस्पति भगवान भोले शंकर से बोले, आज आप देवराज इंद्र को क्षमा कर दीजिए। उनके बार बार अनुरोध करने पर शिव ने इंद्र को तो क्षमा कर दिया, लेकिन जब उन्होंने क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंका तो वह एक नन्हे बालक के रूप में प्रकट हो गई। जब बालक ने धरती पर चलना शुरू किया तो सारी धरती कांपने लगी। सभी धरतीवासी और ऋषि मुनि अधीर हो उठे और इकट्ठे होकर जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बालक किसका है और कौन है? इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। जैसे ही ब्रह्मा ने बालक को गोद में उठाया, उस बालक ने ब्रह्मा जी को कस कर पकड़ लिया। जब ब्रह्मा जी ने बालक से अपना कंठ छुड़वाया तो उनकी आंखों में पानी भर आया। तभी उन्होंने उसका नाम जालंधर रख दिया।
1: जालंधर का पालन पोषण दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किया और ये बालक दैत्यराज जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जालंधर अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार भोले शंकर की भक्ति में लीन हो गया। काफी समय के बाद जालंधर की भक्ति सफल हुई और भोले शंकर से मृत्यु रहित वर मांगा तो भोले शंकर ने कहा कि जालंधर, तुम जो वर मांग रहे हो ये असंभव है, इस वर के बजाय तुम कोई दूसरा वर मांगो। जालंधर ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। इस पर भोले शंकर ने कहा कि जब तक तेरी पत्नी अपने पति व्रत धर्म का पालन करेगी तब तक तेरी मृत्यु असंभव है, तुम मुझसे ही पैदा हुए हो और मुझ में ही विलीन हो जाओगे। इतना कहकर भोले शंकर जालंधर को वर देकर वहां से चल दिए।
2: आमतौर पर यहां पर महाराष्ट्र से और सबसे कुछ जगह से लोग आते हैं, दक्षिण उत्तर भारत के लोग भी यहाँ आते हैं, हिमाचल के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आते रहे हैं और शनि शांति के लिए और साधना के लिए।
0: इतनी दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने साधना करने के लिए आते हैं। हाँ। और यहाँ पर ठहरने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: अभी तक ठहरने के लिए व्यवस्था हो रही है, अभी हुई नहीं है, तो धीरे धीरे ये सब चीजें जो पहले तो इस कैंपस को खोला गया, मंदिर कैंपस को, क्योंकि बहुत भारी भीड़, लाखों की संख्या में एक दिन में लोग दर्शन करते हैं, तो उसके कैंपस को खुला कर दिया गया है अभी। और लंगर भवन के ऊपर इसका प्रशासन का कमेटी ट्रस्ट का मानना है कि यहाँ पर हम लोग सराय बनाएंगे और ताकि लोग यहाँ दूर से लोग आते हैं वो ठहर सके।
0: भाद्रपद मास की आपने बात की है, भाद्रपद मास में यहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है, ऐसे में बहुत ही ज्यादा संख्या में भक्तजन यहाँ पर उमड़ते होंगे। इसके अलावा भक्तजन और किन किन दिनों में यहाँ पर आते हैं?
2: इसके अलावा यहाँ का जो आदिकाल से एक मेला आयोजित होता था, निर्जला एकादशी और शिवरात्रि, तारा रात्रि, ये यहाँ के पौराणिक मेले हैं और पौराणिक त्योहार हैं यहाँ सब, जिनको हम बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ यहाँ क्षेत्रवासी मनाते रहे हैं, पर दूर दूर से लोग नहीं आते थे, एक क्षेत्रीय लोग आते थे। यहाँ पर ब्रह्मकुंड है जो एक मेन सोर्स है पानी जल का, यहाँ पर आदिकाल से यहाँ से जल आ रहा है ब्रह्मकुंड से, और इस जल का ऋषि लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया करते हैं, और विष्णु कुंड का स्नान के लिए, सती कुंड का जो यहाँ पर सती हुई थी पार्वती के समय से, जब सती माता सती हुई थी उसी समय से सती कुंड है, और शिव कुंड का जल बिल्कुल टेस्टलेस है, बिल्कुल आप उसको पी नहीं सकते बिल्कुल, तो उसको चढ़ाने के लिए महाकाल को स्नान के लिए जो है वो प्रयोग करते हैं। चार कुंड है परिक्रमा में, उन चारों का जल जो बड़े तालाब में इकट्ठा किया हुआ है, और निर्जला एकादशी और अन्य त्योहारों पर लोग यहाँ पर स्नान करते हैं।

0: काल्नीमि की पुत्री वृंदा देवी से हुआ। वृंदा अद्भुत सौंदर्य की मूर्ति थी। वृंदा के भगवान विष्णु इष्ट देवता थे और वह हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहती थी। और वृंदा एक पतिव्रता पत्नी थी। जालंधर की सदैव विजय रहने और जीवित रहने का एकमात्र कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म का पालन और भगवान विष्णु की परम भक्त होना था। जालंधर समय के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। जालंधर से ऋषि मुनि तंग आ चुके थे क्योंकि वह उनके आश्रमों को नष्ट कर देता था। जालंधर के मन साम्राज्य विस्तार की भावना दिन प्रतिदिन उग्र रूप लेती जा रही थी। जालंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठान ली। बाद में उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और जालंधर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की हार हुई तथा युद्ध के पश्चात सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। देवताओं द्वारा सारा युद्ध वृतांत सुनने पर लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, दैत्य जालंधर मेरा भाई है, कृपा करके आप उसका वध मत कीजिएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, जालंधर का वध मेरे हाथों नहीं होगा। इसके बाद भगवान विष्णु और अन्य देवता जालंधर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। जालंधर और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। जालंधर भगवान विष्णु पर नए नए शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। भगवान विष्णु जालंधर की युद्ध कला को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु से जालंधर ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बहन लक्ष्मी और आप मेरे महल का आतिथ्य स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी सहित जालंधर के महल में जाने का वचन दिया। तदुपरांत देवतागण कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास गए तथा सारा वृतांत सुना दिया। तभी माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, शक्ति भी तभी काम करेगी जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग्यता से वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति का हरण करें।
1: जालंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया और बाद में कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव और जालंधर की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पहली बार भगवान शिव शंकर सहित समस्त देवता लोग भक्त वत्सल भगवान विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु जालंधर के पास अतिथि बनकर जाने वाले थे। भगवान भोले शंकर और समस्त देवताओं ने सारा युद्ध वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। तब भगवान विष्णु दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उन्हें अपनी प्रिय भक्त वृंदा से छल करना था तो दूसरी तरफ धर्म को बनाए रखने के लिए दैत्यराज जालंधर का वध भी करना था। भगवान विष्णु ने धर्म को बनाए रखने के लिए वृंदा से छल करना जरूरी समझा तथा भगवान शंकर ने जालंधर पर आक्रमण कर दिया।
0: इसी बीच भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास आए। तब वृंदा सांभरी नदी के किनारे भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थी। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को आते देखा, तपस्या से उठकर कहने लगी, आपने विजय हासिल कर ली है? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं उस कैलाशवासी को धूल चटा कर आ रहा हूँ। तभी वृंदा का मंगल सूत्र टूट कर नीचे गिर गया। वृंदा समझ गई कि मेरे पति इस संसार में नहीं रहे। तभी वृंदा कहने लगी कि तुम कोई छलिया हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के बन जाओ। तभी विष्णु अपने असली रूप में आ गए और वृंदा अपने श्राप को व्यर्थ करने की प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह सारे विश्व के लिए वरदान सिद्ध होगा। मेरा यह शरीर गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में बहेगा और तेरा यह शरीर तुलसी बनकर मुकुटनाथ संसार में तेरी पूजा श्रेय हासिल करेगा। जालंधर के साथ महेश्वरी, चामुंडा बज्रेश्वरी, आशापुरी, चिंतपूर्णी, सिमसा, ब्रह्माणी, कात्यानी आदि देवियां अंग संग रहती थीं। तभी माता बज्रेश्वरी ने जालंधर के अर्धमृत शरीर से कहा कि वत्स, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। जालंधर माता के वचनों को सुनकर बोला, हे मातेश्वरी, मुझे यह रणभूमि प्राणों से भी प्यारी है। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आराधना करे, वो व्यक्ति मुक्ति से परिपूर्ण शिव तत्व में शामिल हो और सभी देवियाँ जालंधर को वर देकर वहाँ से प्रस्थान कर लेती हैं।
1: वहीं दूसरी तरफ भगवान भोले शंकर ने जालंधर की ओर देखकर कहा, जालंधर, तुम मेरे परम भक्त रहे हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। जालंधर ने कहा, प्रभु, भगवान विष्णु को साक्षी मानकर आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़िया सदगति मुझे कहाँ प्राप्त होगी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो इतना अनुग्रह करता हूँ कि आप अपनी निकटता को मेरे शरीर के मुख्य अंगों से 12 तेजोलिंग के रूप में प्रकट प्राणियों को इहलोक और परलोक दोनों पक्षों के अनंत ऐश्वर्य को प्रदान कीजिए। मेरे शरीर के छोड़े गए स्थान को जालंधर पीठ के नाम से पुकारा जाए। तथास्तु कहकर भगवान भोले शंकर ने वहां से प्रस्थान कर लिया।
2: शिव शिव शिव शिव।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर। स्वर संजीव अरोरा, प्रस्तुतकर्ता डॉ. जितेंद्र पॉल सिंह। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:25 हुए हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम तराने मन के लेकर। कार्यक्रम तराने मन के सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा सुप्रेम नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रतीक्षा फिल्म से हमने ये गीत लिया है। अनुराधा पोटवाल, मोहम्मद अजीज व साथियों की आवाज, राजेश रोशन का संगीत है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं सावन की घटा इस फिल्म से। यह गीत आशा भोंसले की आवाज में, संगीत ओपी नैयर का,

अमीरी गरीबी फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, बोल आनंद बख्शी के। तराने मन के ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

ये इश्क नहीं आसान, इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। अनवर और आशा भोंसले की आवाजों में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

कार्यक्रम में अब हमने शामिल किया है फिल्म रब्बा यार से मिला दे। इस फिल्म का गीत उस्ताद शहीद शाबरी और फरीद शाबरी की आवाजों में निखिल विनय का संगीत है।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं हम फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम लेकर, और कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ, अभिजीत की आवाज में ये गीत है फिल्म राज से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए उदित नारायण का गाया हुआ, फिल्म का नाम है हमराज।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीपे हुआ तो रब से शिकायत होगी,

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म इश्क से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। ये गीत हमने लिया है फिल्म काल से और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद और गीतकार हैं शब्बीर अहमद।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार ने। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे, बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर हो चुकी है अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों से एक और प्यारी सी मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, ये मुलाकात प्यारी तो होगी, अच्छी होगी, यादगार होगी, ये हम जानते हैं। और जो रूठे रूठे हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, तो ज़रा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसी, क्योंकि रेडियो दीदी बिल्कुल आपके सामने बैठी है। नज़रें उठाकर तो देखिए, अजी जनाब कब तक यूँ रूठे रहोगे, कब तक दीदी आपको मनाती रहेगी, हाँ बताइए ज़रा। नन्हे दोस्तों, ये ज़िंदगी ना बहुत प्यारी है, बहुत हसीन है, तो रूठा ना करो, यूँ हमें मनाना नहीं आता है। जी हाँ, ये जो दीदी है ना, ये भी बिल्कुल आप ही की तरह है, मनाना नहीं आता है। तो नन्हे दोस्तों, आपकी रेडियो दीदी प्रवीण अपने सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती है आपके कार्यक्रम बाल सभा में। और जो नए श्रोता इस बार हमारे साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी धर्मशाला के संग जुड़ गए हैं, उन सभी का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दिन के एक बजे तक आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि दीदी का साथ बहुत प्यारा है, और दीदी के साथ से भी प्यारा अगर किसी का साथ है तो वो हैं हमारे श्रोता, हमारे बाल श्रोता, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और हाँ नन्हे दोस्तों, आपको हम बता दें, आज बात होगी दिल की। दीदी अपना ये प्यारा सा दिल लेकर आई है, और प्यारा सा दिल तो है, लेकिन कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि अजी रुको, कोई और भी है जिनका दिल आपसे भी बहुत प्यारा है। ये जो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एक टक लगाकर दीदी को सुन रहे हैं, आपका दिल भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नाजुक है। तो दिल की बातें होंगी आज, हमारा और आपका दिल कैसा है, क्या हम सोचते हैं अपने इस प्यारे से दिल में, क्या हम समझते हैं, कितना हम दूसरों के लिए अपने इस दिल में दया करुणा और प्रेम सम्मान का भाव रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं हम एक दूसरे से। जी हाँ, एक दूसरे के साथ साथ इस प्रकृति से हमें कितना प्रेम है, वन्य जीवों से, जंगली जानवरों से, घरेलू जानवरों से जो हम अपने घरों में पालते हैं, पालतू जानवरों से हमें कितना प्यार है, और कितना हम उन्हें दया करुणा का भाव दिखाते हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना अपने हृदय में रखते हैं। तो दीदी आपको बताएगी 4 अक्टूबर का दिन क्या विशेष महत्व रखता है इतिहास के पन्नों में। जी हाँ, क्योंकि बात ही हमने दिल से की है ना, तो शुरुआत भी एक करुणामय हृदय से होनी चाहिए। तो ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते ही आपको हम बता देते हैं नन्हे दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर का दिन, रविवार, और 4 अक्टूबर को हम सब मनाते हैं विश्व पशु दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में हम आपके साथ खुलकर बात करेंगे, बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी अभी हमने करना है एक छोटा सा संगीतमय ब्रेक, हमने लेना है, यानी खूबसूरत सा गीत अपने नन्हे दोस्तों तक पहुंचाना है, और उसके बाद हमने करनी है आपके साथ बहुत सारी बातें।

मचा है जंगल में, सूंड उठाए दंगल में। गरजे गजराज हमारे, गरजे गजराज हमारे।

0: ग्राम पेड़ी देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
2: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
8: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
7: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
8: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
7: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।

सभी नन्हे दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में इस समय है नन्हे मुन्ने बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। बात हम कर रहे हैं विश्व पशु दिवस के बारे में, तो ध्यान से सुनना, ठीक है नन्हे दोस्तों। बच्चों, माना ये पशु हमारी तरह यानी हम इंसानों की तरह नहीं होते हैं, ये पंचेंद्रिय नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों इनकी आत्मा में भी मैत्री भाव होता है, यानी ये भी दोस्ती करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी इंसानों की तरह बहुत वफादार होते हैं और इसका छोटा सा एग्जाम्पल है स्वान, यानी हमारा और आपका प्यारा सा डॉगी, है ना, बहुत वफादार होता है ना नन्नी दोस्तों वो। बच्चों, पशु जानवर भी एक संवेदनात्मक प्राणी होते हैं, इसलिए ये सामाजिक न्याय पाने के पूरी तरह से हकदार होते हैं। सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। आपको पता है नन्हे दोस्तों कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव जानवरों के जीवन पर भी पड़ता है। बच्चों, आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना होता है। इसके साथ साथ पशुओं के साथ जो भी बुरा व्यवहार करते हैं उसे रोकना, साथ ही साथ पशुओं के अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करना, आमजन में जागरूकता फैलाना। आपको पता है कि जैसे हमें अधिकार मिले हैं, ठीक उसी तरह से वन्य जीवों को, पालतू जानवरों को और हमारे जो जंगली जानवर होते हैं इनके पास भी अधिकार होते हैं। नन्हे दोस्तों, इस दिन की शुरुआत जर्मन लेखक और प्रकाशक हेनरिक जिमरमैन ने की थी। पहला विश्व पशु दिवस 24 मार्च 1925 को वर्लिन जर्मनी में मनाया गया था, जिसे बाद में 1929 में हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। बच्चों, कई लोग पशु पक्षियों जानवरों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और आजकल के समय की अगर हम बात करें तो ये बात बहुत बढ़ चुकी है, यानी आए दिन हम देखते हैं सड़कों पर, खेतों में जानवर जो हैं वो घूमते रहते हैं, चाहे वो पालतू जानवर हो या फिर वन्य जीव हो, वो घूमते रहते हैं क्योंकि हमने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसा ही है ना। तो नन्हे दोस्तों, आम जन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन काफ़ी हद तक पशु पक्षियों पर निर्भर करता है। बच्चों, आज पशु पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी बहुत कम प्रजातियां बची हैं, इसलिए वन्य प्राणियों के संरक्षण यानी उन्हें बचाने के लिए विश्व भर में पशु दिवस मनाया जाता है। और आपको हम ये भी बता दें नन्हे दोस्तों कि असीसी के सेंट फ्रांसिस के जन्म दिवस पर विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, सेंट फ्रांसिस पशुओं से ना बहुत प्यार करते थे और जानवरों के महान संरक्षक भी थे, यानी जानवरों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो नन्हे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी तरह पशुओं के प्रति दया करुणा का भाव अपने हृदय में ज़रूर रखना चाहिए और सम्मानपूर्वक व्यवहार पशुओं से करना चाहिए। और हम आपको ये भी बता दें नन्हे दोस्तों कि विश्व पशु दिवस 2026 की थीम है उनकी आंखों से दुनिया देखें। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी थीम है ना, कि उनकी आंखों से दुनिया देखें। कई बार होता है नन्हे दोस्तों कि हम उनके जज्बातों, उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब कभी भी आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है या घर में आपने पालतू जानवर पाल रखे हैं और अगर नहीं भी पाले हैं ना, फिर भी पशु पक्षियों के प्रति, इस धरती के प्रति, वन्य जीवों के प्रति अपने दिल में हमेशा अपने करुणा का भाव, सम्मान का भाव, प्यार का भाव ज़रूर रखना है। कहते हैं जो कोई भी भाषा परिभाषा नहीं समझता है वो प्यार की भाषा समझता है। जी हाँ, तो वन्य जीवों के प्रति उन्हें बचाने के लिए एक कदम हमारे नन्हे दोस्त भी बढ़ाएंगे तो दीदी को बहुत खुशी होगी। और दीदी की मेहनत तभी सार्थक हो सकती है जब हमें ये लगेगा कि हमारा काम करना, हमारी मेहनत करना सच में रंग लाती है, क्योंकि दीदी की बातें मानते हैं दीदी के नन्हे दोस्त। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर रुकते हैं और

स्वागत दीदी के सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा में आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और दीदी से बात कर रहे हैं या दीदी बात कर रही है अपने नन्हे दोस्तों से। जी हाँ, कहीं खोना नहीं है, झिल मिलाना है, बहुत सारी मेहनत करनी है और छा जाना है इस दुनिया में। यही तो हम चाहते हैं। इतनी सी तो गुजारिश है दीदी की कि दीदी के नन्हे दोस्त बहुत सारी मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें और छू ले आसमान की ऊंचाइयों को। और अब हम बात करते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के बारे में, वर्ल्ड स्पेस वीक। ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम है। बच्चों, 4 अक्टूबर 1957 को पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण और 10 अक्टूबर 1967 को बाह्य अंतरिक्ष संधि लागू हुई थी। और इस वर्ष यानी 2026 की थीम है रॉकेट क्रांति। इसलिए 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। ये मानव जाति की बेहतरी में योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरिक्ष की पहुंच और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने आज की कक्षा में दीदी से क्या सुना और क्या सीखा, तो आपका उत्तर क्या होगा, बताओ एक एक करके। अरे रे रे रे, रुको रुको रुको, इतना सारा हल्ला, एक साथ इतने सारे बच्चे खड़े हो गए? नहीं नहीं नहीं, दीदी को डर लगता है जब आप सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है अरे आपने धावा बोल दिया। जानती हूँ आपका उत्तर क्या होगा, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं आपके साथ दिल से। तो आप सब यही कह रहे हैं ना, अरे सांस तो ले लो, बैठो बैठो, मुझे पता है आप क्या कह रहे हो। दोस्तों, दुनिया के प्रत्येक जीव के प्रति, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या कोई जानवर हो, जंगली हो, घरेलू हो, या फिर कोई भी हो, उससे आपने प्यार करना है। ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं कि दीदी हमने यही सीखा, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपने ऐसा ही करना है। प्रत्येक वन्य जीवों के लिए आपने अपने दिल में प्रेम का भाव रखना है, सम्मान का भाव रखना है, तभी आप अच्छे व सभ्य नागरिक बन सकते हैं। और हाँ, और पता है क्या बन सकते हैं, अजी दीदी के अच्छे और सच्चे और पक्के वाले दोस्त तभी बन सकते हैं, तभी बनाऊंगी मैं आपको अपना दोस्त। तो चलिए नन्हे दोस्त, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आखिरी पड़ाव है और अब हम बहुत सारे ज्ञान की मोती बिखेरेंगे। और हाँ, जैसे आप अभी खड़े हुए थे ना, बिल्कुल वैसे ही आपने खड़े होना है। और जैसे ही दीदी ज्ञान की मोती फेंकेगी, आपने फटाफट से वो मोती चुन लेने हैं। तैयार है ना आप, तो सुनिए नन्हे दोस्तों। साल 2026 खेल जगत के इतिहास में पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा और रोमांचक साल साबित हुआ। इस वर्ष 5 वर्ल्ड कप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे कई बड़े टूर्नामेंट्स का महाकुंभ देखने को मिला। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो

इतिहास का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इसमें एक या दो नहीं बल्कि तीन देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मिलकर भाग लिया। बच्चों, इस बार टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 की गई, जिसके कारण कुल 104 मैच खेले गए। ये फीफा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फॉर्मेट रहा। इस महामुकाबले को देखने के लिए दुनिया भर से 15 करोड़ से अधिक टिकट रिक्वेस्ट दर्ज की गई। इसके लिए भारत के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में किया गया, जिसमें आदिवासी प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच दिया गया। और नन्हे दोस्तों, 20वीं एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच किया गया। इसमें एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ये थी कुछ रोचक जानकारियाँ जो हमने पहुँचाई आप तक, और अब हम पहुँचा रहे हैं आप तक, जी हाँ, क्या जी, सुनिए ना एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ नैनी दोस्तों, बहुत सारे जुगाड़ आपको भी करने हैं और अपना फ्यूचर बनाना है। तो जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विकास पठानिया।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन IIT आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन IIT वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और IIT के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the Institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by three female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smith Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family.
4: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independent Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
3: The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. India has put up an impressive performance at the 20th Asian Games, securing fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 21 silver and 37 bronze. The closing ceremony of the Games will be held at Paloma Mizuho Stadium in Nagoya, Japan. The event is scheduled to begin at 2:30 p.m. Indian Standard Time. The Indian boxing contingent has returned to New Delhi following a triumphant campaign at the 2026 Asian Games. Speaking to the media upon her arrival, boxer Lavlina Borgohain, who clinched gold in the women's 75kg category on her birthday, shared that the timing made the milestone particularly special. The IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbh, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior Karnataka during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
6: बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।

0: अभी तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: आइए सुनें।

सैनिक भाइयों, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। शब्द रचना अनिल पांडे की है और संगीत संदेश शांडिल्य का।

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहाँ दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहाँ हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा ख़ास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी ख़ास होती थी जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ यादें हों तो आप ताज़ा कीजिए। लिखते हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज़्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहाँ पहुँचता हूँ तो लगता है दीवारें मुस्कराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनवाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों के साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की पुरकशिश आवाज़ें थीं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन हैं। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओ कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहाँ हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज़ से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज़्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक ख़ास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं, जो हमें बड़ा ख़ास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहाँ आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे? एक तो ये सवाल आपको बताना है, और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो घर जहाँ से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहाँ पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था? तो आप हमसे ज़रूर ये बातें ताज़ा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए, जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे, विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी ज़रूरत पड़ती थी, ना ही फ़ोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा, ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी, वो वही काम करती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है। ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है। और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था, नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे। हम लोग रेडियो खेलते थे तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मज़ा आता था, उन दिनों की आज याद पूरी ताज़ा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहाँ बचपन बीता। वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहाँ पानी की बूंदें भिगरती तो सब भीगा भीगा सा लगता। वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपट कर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीता श्रोताओ गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े हुए इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और कुमकुम नज़र आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी ज़रूरी है जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा हो जाता था। रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन जो हैं वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था, बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे हमारे परिवार की। बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं, तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं, वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफ़ेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं। और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओं, मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था, या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छोटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया, पुरानी यादों में खो गए, क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठ कर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है, उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओ। और जो घर की यादें होती हैं, घर की बातें होती हैं, वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत, इन दीवारों की मरम्मत आपको ज़रूरी लगती है? जहाँ कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था, ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओ कि किसी घर के सामने आप पहुँचे जिस घर में आपको जाना था, लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना? ऐसा कुछ

कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में हैं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने ज़मीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओं, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल के हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहाँ भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था, कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहाँ पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे श्रोताओं। तो कुछ ना कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से ज़रूर किया होगा उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहाँ लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो ना सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त निहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया।

0: जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल है। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता।

0: और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
1: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
4: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
2: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
5: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
7: वासियों को हार्दिक बधाई।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
8: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
8: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है, यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
8: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में

0: साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम अपने श्रोताओं को लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद उठाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाश दीप, इस फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: सी रामचंद्र की तर्ज साहिल लुधियानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने इस वर्ष हुए पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के दौरान निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। स्वीकृति आदेश के अनुसार प्रदेश की 136 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। प्रति पंचायत 25 लाख रुपए की दर से ये अनुदान दिया जाएगा। सबसे अधिक 42 निर्विरोध ग्राम पंचायतें शिमला जिला में चयनित हुई हैं। पीएम सेतु योजना ने आज अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस योजना के जरिए उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना व रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रस्तावित 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का 100% अवार्ड घोषित किया जा चुका है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में अब तक करीब 2,285 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
1: कांगड़ा एयरपोर्ट ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसकी एक्सपेंशन जो कि 1376 मीटर जो हमारी एयर स्ट्रिप है उससे बढ़कर 3010 मीटर की जानी है। ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। हमारी जितनी लैंड एक्विजिशन अवार्ड है वो 100% डिक्लेयर कर दिए गए हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर द्वारा। उसमें लगभग 2285 करोड़ रुपया लैंड कंपनसेशन का दिया भी जा चुका है जितने बेनिफिशियरी है इसके। साथ में 14 मोहालों में जो लगभग 13 मोहाल का R&R अवार्ड भी घोषित किया जा चुका है उसमें लगभग 180 करोड़ R&R अमाउंट है वो भी डिस्पर्स किया जा चुका है। वो प्रोसेस कंटिन्यूड है। ऑलमोस्ट 150 करोड़ की और डिमांड जो है वो सरकार के पास भेजी गई है।
0: उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत मांझी खड्ड पर प्रस्तावित पुल के निर्माण को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच चर्चा जारी है। कुल्लू और लाहौल स्पीति दौरे के दौरान मत्स्य विभाग के निदेशक ओमकांत ठाकुर ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों और विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय परियोजनाओं में तेजी लाने और इन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पतलीकूहल में प्रदेश के पहले ट्राउट ब्रूड बैंक के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। निदेशक ने लाहौल स्पीति में विभाग की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए सिस्सू में विभागीय भूमि का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि सिस्सू में विभागीय कार्यालय शुरू करने के प्रयास जारी हैं। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव इस वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन स्थल और विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। 4 दिवसीय महोत्सव में किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक संगीत, स्थानीय कला और हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए महोत्सव के दौरान एंटी चिट्टा मैराथन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित मनाली प्रवास को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने कुल्लू में आयोजित एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुने सामयिक चर्चा। विषय है विकसित भारत 2047, एक राष्ट्रीय विजन। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय विजन है जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र बनाना है। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में उच्च वृद्धि तथा भारत को दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करना है। अनुमान है कि वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए उद्यमिता, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के अवसर तैयार करना, ये मिशन केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित एक जन आंदोलन है। बुनियादी ढांचे का विस्तार, वित्तीय समावेशन और किसानों व महिलाओं का सशक्तिकरण इस यात्रा को निरंतर गति दे रहे हैं। विकसित भारत का अर्थ एक ऐसे सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र से है जहां प्रत्येक नागरिक को उच्च जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध हो। भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुसार इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक यानी कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को आर्थिक मजबूती, सामाजिक न्याय, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक विकसित देश बनाना है। भारत ने स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। विकसित भारत का उद्देश्य केवल आर्थिक विस्तार नहीं बल्कि समावेशी, टिकाऊ और तकनीक संचालित विकास की परिकल्पना करता है। विकसित देशों के समकक्ष उच्च प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करना इस लक्ष्य का केंद्रीय बिंदु है। विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 6 गुना वृद्धि करनी होगी। ये लक्ष्य तभी संभव है जब भारत अगले 2 दशकों तक लगातार 8% या उससे अधिक की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने में सफल हो। ये आवश्यकता भारत की विकास रणनीति को असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी बनाती है। ये क्षेत्र भारत की खाद्य सुरक्षा का आधार है तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत भी प्रदान करता है। संतुलित विकास के लिए कृषि की उत्पादकता में वृद्धि आवश्यक है। भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान देते हैं और 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन की रीढ़ माना जाता है और समावेशी विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेश, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि का मूल आधार है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2030 तक भारत की कार्यशील आयु की जनसंख्या 100 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है जिससे भारत वैश्विक कुशल श्रम बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है जहां प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त उच्च वृद्धि दर बनाए रखना है। मानव पूंजी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यक है। वर्ष 2035 तक विनिर्माण क्षेत्र, कृषि के आधुनिकीकरण तथा वैश्विक वैल्यू चेन में गहन एकीकरण पर बल देना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, भारत ट्रेड नेट, एयर कार्गो और वेयर हाउसिंग अवसंरचना में सुधार से व्यापार को और सुगम बनाया जा सकता है। विकसित भारत 2047 केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि भारत के सभ्यतागत पुनरुत्थान की व्यापक परिकल्पना है। ये लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समावेशिता, स्थिरता, तकनीकी नवाचार और मानव केंद्रित विकास को समान प्राथमिकता दी जाए।
2: अभी आप सुन रहे थे सामायिक चर्चा, विषय था विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय विजन। वाचक स्वर नविता चौहान का था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंजारे, बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का। इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये गीत आपने सुना नगमा निगार हसरत जयपुरी मसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी ज़िला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से दिदवा साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूर ए मुजस्सम, रौमा, दिलावर हुसैन ट्रौमा, अजहरुद्दीन, तमामुद्दीन ट्रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज़ अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सल, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
2: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
3: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं।

0: तुम्हारा नाम? कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
0: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
0: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
0: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास?
0: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं, मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा, आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रामा।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
1: होंगे मगर।
0: अनाम।
1: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम, अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही

0: मां कितनी विचलित हो गई। मां की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें। अनाम को पहली बार मां के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है, बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे

0: अब मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनी

0: रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं,
1: अनाथ बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न माँ कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं।
0: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर माँ के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता, माँ कहती खाना खा, अनाम आता, खाना खाता। माँ कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा। आ,
3: आ, आ, आ, अनाम, खाना खा, चल, घर चल, जा, बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो, सो जा,
0: चल, उठ,
3: उठकर हाथ मुंह धो,
0: हाथ मुंह धोकर
3: नाश्ता कर, चल, स्कूल चल, आ अनाम, नाटक कर,
0: कर
3: नाटक कर, अच्छा अभिनय कर, चल तू गुस्सा तू हंस, खुलकर हंस, आ बाजा बजा, वायलिन बजा,
0: बस
3: बंद कर, अब बंद कर, चल कहना मान, आज्ञा मत डाल, खुश रह, आंसू मत रो, खुलकर रो, खुलकर रो, खुलकर रो।
4: इस तरह नहीं गा सकते, मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं, अकेले ही जाना
2: चाहिए,
4: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा। मैं तेरे लिए वॉयलिन लाऊंगा, मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
5: अनाम
4: के लिए वॉयलिन खरीद।
5: अनाम, अनाम,
2: हाँ?
5: क्या हुआ बेटे?
2: हाँ?
5: क्या तुम डर गए थे?
2: हाँ? हाँ?
5: सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
2: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, अनाम, अनाम।
0: हाँ?
2: ये वायलिन बंद करो और पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ, तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की माँ अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन ये है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी माँ के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम दिन भर से कहाँ गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी माँ को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता माँ?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
0: मिस्टर बत्रा चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया, कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है, मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
0: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
2: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी

0: बस में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए माँ की कोई याद नहीं, दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती मैं, उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
0: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
5: अनाम भैया।
0: हाँ रितु।
5: वायलिन सुनाओ ना।
0: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी, है ना?
5: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: सुनते हैं अनाम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ हैं।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।
0: अभी भी पड़ोसी ने आकर खबर दी है कि वायलिन बजा बजा कर अनाम ने अपनी उंगलियों को घायल कर डाला है। तमाम वायलिन उसकी उंगलियों के खून में भीग गया है।
1: प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साईं के 4 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: उनकी यादों के

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
5: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इट्सेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
5: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
5: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
5: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
5: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
5: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
5: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
5: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
5: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
5: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पाँव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पाँव हिल गया।
0: ओहो हो,
5: तो ये तपस्या होती है
0: जी
5: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
5: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
5: उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
5: उसकी साधना है।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
5: परमेश्वर, तो यहाँ से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
0: जी जी,
5: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
5: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती है,
5: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कव्वाल जो थे उन्होंने दी
0: जी।
5: और वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफ़ी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
0: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
5: तमाम
0: प्रदेशों में,
5: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
0: जी
5: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
0: साउथ हो,
5: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हज़ार गाने तो मामूली बात है।
0: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
5: इतना काम।
0: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
5: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
0: वाह वाह,
5: और 17,000 रुपए का घर था।
0: क्या बात है।
5: तो पहला घर अपना
0: किस इलाके में था?

0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रुपये का, 17,000 रुपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8,000 रुपये कर्जा था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि काम तो कर ही रहे थे। तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए।
1: जी
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया।
1: जी,
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया।
1: जी
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टरी
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे।
1: जी, ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
1: जी,
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ।
1: जी,
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक एक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
1: नोटेशन
0: लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव Somebody जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
0: और उसकी नॉलेज होना,
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी,
1: में
0: जी,
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी,
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रोबेबली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है।
1: जी,
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन साहब को पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी।
0: हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब, और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: बाबा,
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
1: जी,
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ।
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
1: गजब,
0: एक जगह ऐसी थी जहाँ पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी सोनी जी
0: की, क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। मदन साहब थे वहाँ पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा। सुना ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहाँ पे, ओके टेक करो।
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है, नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी जी
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए, सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो एंड सो, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट

0: का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया,
1: जी
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं खुद?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का,
1: जी
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट कहाँ?
0: ये मेरी डिसाइड है,
1: जी
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहाँ पे हूँ। जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था,
1: जी
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी। म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आजा
0: जी
1: शाम होने आई में
0: जी जी
1: हॉर्न की आवाज आती है।
0: जी

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी,
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट,
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी, ये किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे ही अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के
0: नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत देसाई साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पाटे जी थे जिन्होंने काम किया कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आर डी बर्मन के साथ काम किया, एस डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी गाय प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: वैसे भी उन्होंने काम किया, क्या काम किया उन्होंने एज ए अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी, वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनके पास। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए बम्बई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे, जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे, तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: वो 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुँचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं,
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी
0: तो बोलते ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं ये
1: हाँ,
0: भी ठीक है।
1: हाँ,
0: फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: मैं
1: बाप रे,
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के हैं।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है,
1: जी
0: सबसे
1: जी
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे,
0: ये
1: इसके लिए
0: कॉपी,
1: परेशान
0: किसी की
1: रहे।
0: कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी,
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
0: ईमानदारी की
1: बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हों, चाहे रोशन साहब हों, मदन मोहन हों, सी रामचंद्र हों, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है।
0: जी,
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरिजन के लिए बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा,
0: लेकिन हो नहीं सका।
1: जी, सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी,
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी डैडी,
1: मोपेट, जी
0: मोपेट, डैडी ने 500 रुपये की या 450 रुपये की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली, हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड,
0: जो से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका, मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांगने

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटी है।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया, मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामत ही बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमरुत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8
1: और 1 चंद्रकांत।
0: 9 गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे,
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना

0: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
1: गजब गजब।
0: चंद्रकांत हो गया,
1: पूरी टोली का,
0: पूरी टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
1: जी,
0: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: खाना खाते हैं।
1: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
0: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो बजा, आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
1: क्या बात है?
0: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
1: जी जी,
0: तो सुन लीजिए आप
1: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था। मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
0: जी
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती करती केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया
1: एक
0: था।
1: जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई
0: ओ
1: और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। कहा पंच जी, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी की गलती हुई थी केवीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस? अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
0: क्या बात है,
1: ही लाइक ए फ्रेंड, एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
0: वाह।
1: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। फिर सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी, आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए, ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
0: हाँ,
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला।
1: वायलिन सोलो का पीस था
0: अच्छा
1: सागर फिल्म,
0: जी,
1: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
0: अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है,
0: हाँ
1: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी।
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे?
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
0: जी
1: जितना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे
0: हाँ
1: नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
0: जी।
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहाँ खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहाँ उसी चैम्बर, तो

0: चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, ये उत्तम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ए, ऐसे
1: स्नैप आ जाए,
0: तू हाथ से करना
1: जी,
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
1: जी,
0: अभी ए,
1: हाँ
0: ये साउंड है
1: जी,
0: ये चाहिए, तार टूट गई,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो की दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है,
1: हाँ हाँ,
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं नहीं वो पीस, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार।
1: हाँ
0: बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया कि ओ
1: काम करते रहने से हो जाता है।
0: काम करने से हो
1: ये जो
0: जाता
1: अजीब सा गाना था ये कौन सा
0: है।
1: था?
0: नहीं याद नहीं।
1: वो याद नहीं। अच्छा।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
3: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
6: मेरा साया साथ हो।
7: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
8: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
9: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
8: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान तथा ओडिशा और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। PM सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत ITI के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इन 6 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा जबकि मतगणना शुक्रवार को की जाएगी। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। विधानसभा सीटें मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं जबकि कांग्रेस नेता प्रद्युत बरदोलोई के इस्तीफे के बाद नौगांव लोकसभा सीट रिक्त हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सिटीजन पेंशन भोगी

0: क्यों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ टकराव का कोई सैन्य या प्रतिबंधों पर आधारित समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि तनाव खत्म करने का एकमात्र तरीका कूटनीति है। आज तेहरान में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूतों और प्रतिनिधियों से बातचीत में श्री अराक्ची ने उम्मीद प्रकट की है कि अमरीका समझदारी और तर्कसंगत ढंग से काम लेगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आशा प्रकट की है कि टकराव खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। यमन की सेना ने दावा किया है कि देश के कुछ अहम मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को खारिज किया है कि रियाद को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमलों की पुष्टि की है। एशियाई खेल 2026 का जापान के नगोया में आधिकारिक समापन हो गया। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज वर्ष 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों में 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers, EMPs. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in their goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. Dr. Jaishankar drove home the point that the changing landscape which drives the emerging and middle powers debate is of a repositioning US, rise of China and greater independence. Later, in conversation with President of Munich Security Conference Wolfgang Ischinger and State Secretary, Germany Federal Foreign Office Bernard Kosch, Dr. Jaishankar said India has decades of high growth ahead and a demography which will sustain that level of growth. Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that corporate governance is the invisible infrastructure of a modern economy. Addressing the 58th Foundation Day of the Institute of Company Secretaries of India in New Delhi today, the Vice President said that strong institutions and sound governance will be as important as physical and digital infrastructure in building a Viksit Bharat. Mr. Radhakrishnan also said that investor confidence is essential for sustained economic progress. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements.
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
1: Campaigning for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam ends today. Polling for the 6 seats will be on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, polling will be held for Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITI Scheme completed 1 year today. The scheme of the Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship was launched on this day last year.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन फिल्मों से। मीठी मीठी सर्दी भरी इस शाम के सायंकालीन प्रसारण में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी श्रोताओं का मेरा यानी वर्षा टोश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शुरुआत कर रहे हैं इस भजन के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये भजन जिसे हमने लिया था हम दोनों फिल्म से। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म शिव भक्त से।
1: संसार तुम्हारा यहाँ वहाँ

अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम था शिव भक्त। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कनन देवी की आवाज़ में फिल्म हॉस्पिटल से।

भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: वाली फिल्म से आरती मुखर्जी और चांद्रानी की आवाजों में लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से, FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच, और इसमें आज के दिन रहता है वीकली पल्स, जिसमें हम आप युवा साथियों को देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल करंट अफेयर्स की अपडेट।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को, हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो युवा साथियों, फिर से हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में लेकर जानकारियों का पिटारा। जी हाँ युवा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं और हमारे श्रोता भी सभी जानते हैं कि युवा मंच के इस बदले हुए स्वरूप में हम हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं अपने पिटारे में। तो आज है रविवार और रविवार के दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन रहता है वीकली पल्स का, जी हाँ युवा साथियों, आज इसमें हम आपसे साझा करेंगे खूब सारी जानकारियाँ देश विदेश के बारे में। जी हाँ, पर हमें पता है हमारे युवा साथी जो हैं वो ऑलरेडी अपडेट होते हैं। हमारा जानकारी देने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसा कतई नहीं है। युवा साथियों, आप भी अपडेट होते हैं सभी चीज़ों से इस सोशल मीडिया के दौर में, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि कोई चीज़ अगर आपसे, कोई जानकारी आपसे अगर छूट गई है तो उसकी भरपाई हो पाए। जी हाँ युवा साथी, और इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन आपके लिए कुछ नया खोज कर लाते हैं। जानकारियाँ या अपडेट्स शुरू करने से पहले हम अपने युवा साथियों का करवाएंगे मनोरंजन इस गीत के साथ। चलिए सुनते हैं अंजाम फिल्म का ये गीत।

0: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
1: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
2: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
1: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज है रविवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं वीकली पल्स। और वीकली पल्स में सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों की। जी हाँ युवा साथियों, वैसे आपको तो विदित ही होगा कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई उड़ान FZ 1073 में सह पायलट ने कॉकपिट कुल्हाड़ी से मुख्य पायलट पर हमला कर नियंत्रण छीनने का प्रयास किया और भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार और चालक दत्त ने सूझबूझ से उसे काबू किया और 180 से अधिक यात्रियों की जान बचाई। इजराइल और UAE इस जिहादी साजिश की जांच कर रहे हैं।

जवाबी हवाई हमले शुरू किए हैं। युवा साथियों, जानकारियां हम साथ के साथ आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन फिर से चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम युवा मंच इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त वर्षा कटोच। बात हो रही है वीकली पल्स पर। चलिए, मुंबई एयरपोर्ट पर स्लॉट कटौती के विवाद की अगर हम बात करें तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL ने टर्मिनल एक के पुनर्विकास के चलते 26 अक्टूबर से 46 एयरलाइनों की 265 साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है, जिसका वैश्विक एयरलाइन संस्था IATA ने कड़ा विरोध किया है। रेलवे और तकनीक में

प्रगति की अगर हम बात करें तो युवा साथियों, जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को नया बढ़ावा देते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ने चेनाब और अंची पुलों को पार करते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का नया कीर्तिमान छुआ है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रियल टाइम नज़र रखने के लिए एक AI आधारित नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। जी हाँ युवा साथियों, जानकारियाँ हम आपके साथ यूं ही साझा करते रहेंगे, लेकिन फिर से चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। फौरन हाजिर होंगे फिर से जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम चल रहा है युवा मंच और इसमें आज के दिन आप सुना करते हैं वीकली पल्स। जी हाँ युवा साथियों, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है 103.4 MHz पर। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वर्षा कटोच। बात करते हैं एशियाई खेलों की। आज तो वैसे समापन हो रहा है लेकिन एशियाई खेलों में भारत ने अपना दबदबा जो है इस बार कायम रखा है। भारत ने जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में कुल 85 पदक, उसमें से 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी फाइनल में मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजल्स यानी LA 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब बात करते हैं फुटबॉल इंटरनेशनल फ्रेंडली के बारे में। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में ब्राजील की मजबूत फुटबॉल टीम ने भारत को 4-0 से हरा दिया। हालांकि भारतीय टीम के जुझारू खेल की काफ़ी सराहना हो रही है तो अगली जानकारी हम साझा करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
3: तरह शाम से जल जाते हैं, शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं।

युवा साथियों, अब बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की। तो यहां आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में 4000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 5 अक्टूबर 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक में अन्य सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर बड़ा फैसला आ सकता है। आगे हम बात करेंगे

ओल्ड पेंशन स्कीम और आउटसोर्स नीति की। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने ये साफ किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द ही एक नई नीति लागू की जाएगी। और सरकार ने राज्य के श्रमिक परिवारों के लिए अपना खजाना खोलते हुए 1,471 लाभार्थियों को 5.78 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की है। जी हाँ युवा साथियों, तो अब घड़ी की सुइयां जो है वो ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं और कह रही हैं कि वाणी को यहीं विराम देना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह और मैं यानी वर्षा टोच आगे लेने से पहले आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि युवा साथियों, दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, एक अंगुली तो दूसरों की तरफ होती है लेकिन चार अंगुलियां हमारी तरफ होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से। तो चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 MHz पर आज शाम को प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामी गजल सुनवाया जाएगा। शाम 6:30 पर महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज लड़की की शादी में दी जाने वाली शिक्षा पर बातचीत होगी और साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए महिला श्रोता सखियां डायल कर सकती हैं हमारे दूरभाष नंबर जो कि है 01892224391। कार्यक्रम खेतीबाड़ी शाम 7:10 पर सुनवाया जाएगा। इसमें जानकारियों के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8:00 अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। देशगान का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:30 का। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निदेशक JP दत्ता द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 व रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 10:00 पहले डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026, उसके तुरंत बाद अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 MHz पर शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आरबीआई कहता है बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अपनी उपलब्ध भूमि और संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर आय के स्थायी साधन विकसित करने चाहिए। शिमला जिला के चमियाना में आज खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। अनिरुद्ध सिंह ने युवाओं को खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हमीरपुर में आज भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठन प्रत्येक सीट पर जीत के लक्ष्य के साथ काम करेगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश की 8,007 बूथों पर संगठन को मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश भाजपा सहभारी दर्शना सिंह, विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। पीएम सेतु योजना ने आज अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस योजना के जरिए उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ये योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
2: पीएम सेतु योजना का उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक मनाली और अटल टनल प्रवास के चलते जिला प्रशासन ने विशेष यातायात प्रबंध लागू किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिम्बा मंदिर व ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही बंधित रहेगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था का पालन करने का आग्रह किया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्य से बाहर रहने वाले हर हिमाचली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रदेश का मान बढ़ाया है और भारत निर्माण में योगदान दिया है। वे आज हरियाणा के फरीदाबाद में हिमाचल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी याद किया। सिरमौर जिले में पीएम श्री विद्यालय नाहन में जिला स्तरीय अंडर 19 खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। समापन समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त एकता काप्टा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है।
3: सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और जैसा मुझे यहाँ पर जो यहाँ स्टाफ है उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ से जो नेशनल वगैरह भी खेल चुके हैं। खेल कूद जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि खेल कूद हमारे बच्चों को अनुशासन के साथ साथ एक टेम्परामेंट, एक फाइटर बनाता है, टेम्परामेंट बिल्ड करता है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

0: से खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
2: खाता हुआ एक्टिव,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामी गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम श्यामे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में।

0: अभी आपने सुना अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई इस गजल को। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के

0: माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
2: गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन की आवाज में गाई इस गजल को।

0: अभी आपने सुनी ए हरिहरन की आवाज में गाई ये गजल, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: जिंदा किया है हमने मसीहा के नाम को, मुद्दत से नाम सुनते थे मोमिन का बारे, आज देखा भी हमने उस शोरा के इमाम को।

तलत अजीज की आवाज में गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का शमे गजल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। इसमें आज बातचीत होगी लड़की की शादी में दी जाने वाली शिक्षा के विषय में। जुड़ने के लिए आप डायल कर सकते हैं 01892-224-391, ये दूरभाष नंबर।

सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरां सुनने वाले सारे न्याणे स्याणे साड़ियां बोबो पैना जवंदड़े पाओ और बाकी जितने भी श्रोता सखियां सारे जितने भी इस वेला साढ़े कन्ने जुड़े न तिना सारे तुहाड़ी बड़की बोबो यानी वर्षा कटोश की तरफ से प्यार भरी नमस्ते। ता भैनों कदियां तुहां अहां ता उम्मीद करने की तुहां सारियां अपने अपने घरां च सुखी होनियां है ना, कन्ने तंदुरुस्त भी होनियां, क्योंकि साड़ियां भैणां अगर सुख शांति कन्ने हुन कन्ने तंदुरुस्ती कन्ने हुन ता सारा जिहड़ा कारोबार है सै खुशहाल रहिंदा। ता बोबो भैनों अज अहां गलबात करनी है कुड़िया दे ब्याह च जिहड़ी अहां कुसी टाइम शिक्षा दिंदे थे, शिक्षा यानी एक फोटो दे फोटो फ्रेम दे रूप च अहां जिहड़ी शिक्षा मढ़ाई के दिंदे हे, अज अहां तिदे बारे च खूब सारियां गल्लां करनियां। कन्ने मैं ये दिखना है कि मेरियां बोबो भैणां बड़ियां मॉडर्न ते नहीं होई गईयां, तिसा शिक्षा दे बारे च कुछ जानदियां न कि नहीं जानदियां न। कन्ने जे मेरियां बोबो भैणां इस बारे च जानदियां न तां तुहां ज़्यादा ते ज़्यादा इस कार्यक्रम च जुड़ी के मेरे कन्ने इस पर जिहड़ी ऐ सै जानकारी साझा करनी। जिहड़ा मिंजो पता होगा सै मैं तुहानू दसणा, कन्ने जिहड़ा मिंजो नहीं पता होणा सै मैं तुहाडे ते सिखणा है ना जी। कन्ने जुड़ने तैयार तुहानू नंबर पता ही है 0189224391, इस नंबर पर तुहां डायल करना है। मिंजो पता है इस वेला मेरियां जिहड़ियां बोबो भैणां हैं सै चुल्लड़ू वल लगियां होंदियां, तां डंगरियां दा काम पिया होंदा है ना, सांझ पौंदी दो वेले ढुकदे तां पूजा पाठ दा टाइम होई जांदा, तां रसोई दा टाइम होई जांदा, न्याणे पढ़दे हुण तां तिन्हां भी डांटने दा टाइम होई जांदा, क्योंकि सै खेला दे हुंदे बाहर तां तिन्हां अंदर सदने दा टाइम होई जांदा। पर मैं ये चाहती कि तुहां इन सारिया चीज़ों से बाहर निकली के अगर तुहां रेडियो सैट ऑन नहीं कित्या तो तुहां रेडियो सैट ऑन करा, कने इस कार्यक्रम का हिस्सा जिहड़ा है सै तुहां जरूर बनना है। अज अहां तिसा शिक्षा पर गल करनी है कि पहलकना जिहड़ा टाइम था हुण तां खैर सारा कुछ स्टैंडिंग होई गया, मतलब खड़ोई के ही सारा कुछ हुआ दा, पर पहले जिहड़ा क्या अली तक ग्रां च अली भी सही सिस्टम है बैठी के खाना खाने दा, पैंठी च खाना खाने दा। ता कुड़िया दे ब्याह च ए बड़ा भारी मतलब जिसी ओह बोलदे कि बड़ा भारी इक क्या बोली सकते दिले ने जुड़िया जिहड़ा पल हुंदा था है ना, तो तिस पर अज अहां गलबात करनी है। पर मैं चाहती गलबात करने ते पहले ना मैं तुहानू जो गीत सुनाई लिया, पर ये मेरियां बोबो भैणां जिहड़ियां ना जुड़ना शुरू हो गईयां, चल अच्छा पहले गलबात कर लेंदे अपनियां बोबो भैणां ने। हैलो,

0: हेलो हेलो हेलो जी,
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी। क्या गल, अपना
1: हाँ जी,
0: नाम
1: आवाज
0: दसा कने अपने ग्राएं दा भी नाम दसा।
1: मेरा नाम रक्षा देवी है जी, कने ग्राए दा नाम है परसेल।
0: ये कुतां पौंदी?
1: ये छापरे दे नेड़े तेड़े होंगे।
0: अच्छा, तां शिक्षा दे बारे च जहां गप्पां मारा दे कने जानकारियां लिया दिया दे, तां तुहां क्या गलाना चाहंगे? ऐ कुछ पता शिक्षा दिंदे हे पहले यहां कुड़ियां दे ब्याह च,
1: हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते हैं दिन दे
0: है ना? कुछ याद है न बोल, क्या क्या लिखते हे यहां? एक बड़ी वो बनाते हे, मड़ाते हे तिसाई तस्वीर है, पहले हथे ने लिखते हे, चाहे सहेलियां देनियां हियां, चाहे भैणा ही लिखी के देनियां हियां, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, दिखी के था मैम ये पिए पर पंजाबी च होंगी है ना, इतनी लाइन याद नहीं है हूँ।
0: अच्छा, मतलब वो यहाँ पता है ना, शिक्षा दा पता है ना कि कुड़ियां दे ब्याह च दिंदे हे।
1: जी मैडम जी, दिन दे
0: हुण क्या लगदा तुहानू कि दोबारा आना चाहिदा है? क्योंकि हुण तां तुहां दिखिया होना कि पैंठियां वाला रिवाज तां हुण ग्रां च तां फिर भी चलो थोड़ा बहुत है, कने बाकी तां हुण खत्म ही हुंदा, ज़्यादा स्टैंडिंग ही हुई है सारा, है ना? खड़ खड़ोते रोटी खा दे सारे, है ना? तो
1: जी
0: पहले तो
1: मैडम
0: यह होंदा हा कि दिखा कितना महत्व होंदा हा इस शिक्षा दा, कि जलू लाड़ा विदाईया दे टाइम में खाना बहंदा हा, है ना? कने पैंठी च चौकी रखदे हे लाड़े तईं, तिस पर तिदी रोटी रखोंदी ही लाड़े दी, है ना? जिहड़ा
1: जी,
0: ब्याहना
1: हाँ
0: आया
1: जी
0: होंदा हा।
1: जी
0: कने इतना ऐसा शिक्षा है, मतलब मन्या जांदा है कि तालू तक कोई भी बराती रोटिया दा ग्राह नहीं पांदा हा जलू तक शिक्षा पढ़ी के खत्म नहीं होंदी ही।
1: हाँ जी, कुछ लोग तो रोना भी लगवाते हैं, पढ़ने वाले भी कने जेड़े सुनने वाले हैं
0: हाँ,
1: भी।
0: दिखा कितना सत भी था कने कितनी मान्यता थी। थोड़ी देर तो अंजो मैं सुना, कुछ याद
1: हाँ
0: होगा तो
1: जी जी
0: अंजो, जिमें
1: बिल्कुल,
0: इस शिक्षा दे बोल लिखते होंगे है यहाँ भी, आया ब्याह दा शुभ दिन, कने मैं सोचा कुछ उपहार दिया, है ना? सोचदी
1: जी
0: सोचदी है मुझे आई याद, क्यों ना मैं अपनी भैणों सारे परिवार दी तरफ ते एक शिक्षा दिया, है ना?
1: शिक्षा। हाँ जी
0: लिखना लगी जिसा वेला मैं शिक्षा, दिल मेरा बड़ा भारी घबराना लगा, हत्थां ते कलम ना चले, अखियां चों नीर डुले, भैणा दे बछोड़े दा सीन जेड़ा ऐसे नज़र आना लगा, है ना?
1: बिल्कुल
0: स्टार्टिंग आह इत्थों ते करदे है ना।
1: जी जी
0: तो तुहानू
1: बिल्कुल
0: जो क्या लगदा कि सह रिवाज अच्छा था ना? दिखा कितनियां सारियां गल्लां जिहड़ियां होंदियां सह शिक्षा, मतलब शिक्षा जिहड़ी है सह दहेज दे रूप च कुड़िया कन्नै जांदी ही, है ना?
1: जी बिल्कुल, हाँ
0: दहेज
1: जी
0: कोई यही नहीं हुंदा जिहड़ा हाँ लक्कड़ काठ दिंदे, सह दहेज नहीं, ये शिक्षा दे रूप च जिहड़ा दहेज आंदा था ना कुड़िया ने, सह सारिया उम्रा तईं रहिंदा हा। क्यों,
1: सबसे बड़ा दहेज वही है जी।
0: है ना, कि
1: हाँ जी
0: इतना बड़ा लिखी के देना, और हर पैराग्राफ च शिक्षा होंदी ही कुड़िया वास्ते, कि
1: जी मैडम
0: सहुरियां ने
1: जी,
0: जाई के तै क्या करना है, कदे तेरा रहन सहन होना चाहिए, सस सहुरे कदे होंदे, तिना ने तै कियां मिली वरती के रहना, जेठ जठाणियां, है ना? तो तुहानू जो क्या लगदा है रिवाज दोबारा आना चाहिए?
1: बिल्कुल होना चाहिए था मैडम।
0: तो अहाँ यो खत्म ही नहीं करना चाहिए ना? वैसे ग्रां च ताली भी दिया दे, ऐसा नहीं है, ग्रां च हाड़े रिवाज जेड़े हैं, बड़े सारे रिवाज जेड़े हैं, से खत्म नहीं है ना, अली भी दिया दे, जियां अहाँ ही कई बारी कहीं लिखी के कने बड़ा बारी पुन समझे जाता था शिक्षा कुसियो दहेज च
1: हाँ जी,
0: देना, है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो कुछ याद आया और इस पर कि नहीं आया?
1: नहीं याद तो हूँ, पता नहीं होना कि नहीं होना, पर लिखी हूँ मैं, खुद लिखी ही मढ़ाई के दीती है अपनी चाची कुड़िए दीती
0: मैं तो
1: थी।
0: अपनी है ना सखियां सहेलियां अपनी भैनों तो आदि है, वे बड़ियां मॉडर्न तो नहीं हुई हैं, कुछ पुरानियां गल्लां याद रखियां कि नहीं रखियां?
1: ना जी ना मैडम, मॉडर्न का होना, अपने जेड़े पुराने रीति रिवाज सब भूलना भी नहीं चाहिए, देखने दिले च सा जगाई के रखना चाहिए, देखने कुछ और बंदे भी दसना चाहिए भी नहीं, पुराने रिवाज होना ही चाहिए।
0: मुझे लगता कि बेशक चलो अज स्टैंडिंग हुई या सारे ही भई मतलब हूँ तो मैरिज पैलेस च ब्याह हुआ दे सारे लगभग, है ना? पर
1: जी
0: मुझे
1: मैडम
0: लगता कि शिक्षा तो अहाँ दे ही सकते उपहार स्वरूप अपनी कुड़िए,
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल जी,
0: ना? तिस च दिखा कितनी अच्छी गल्लां जिहड़ियां सै लिखियां होंदियां, दुनी परिवारों जोड़ने तईं क्या कुछ करना पौंदा, है ना? सै सारा
1: जी
0: कुछ तिसे वो समझाया होंदा, जिहड़ी कुड़ी बिट्टी जिहड़ी बगाने घरे जांदी ना ब्योई के, है ना?
1: जी बिल्कुल, हाँ जी,
0: तां उहने दसा भी कुड़ी कड़ी है तुहाड़ी कोई कि नहीं है,
1: साड़ियां कुड़ियां हैं जी, दो
0: ब्याही तियां कि ब्याहणियां ना?
1: ना ना ना, छोटी
0: छोटियां ना,
1: ब्याहनी जी।
0: तो
1: हाँ
0: इयां
1: जी
0: करना जल इन्हां दे ब्याह होने ना, तो
1: जी
0: बेशक तू हाँ मैरिज पैलेस च ब्याह करा, पर ये है कि अपने रीति रिवाज अपने संस्कार जेड़े हैं तिन्हें आसा नहीं भुलना, कने जड़ियां भी बोबो भैणा सुना दियां इसा वेला, कने जड़ियां जुड़िया दियां मेरे ने इसा वेला, तू हाँ सारियां बोबो भैणा जड़ियां ना ਤੁਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ
1: ਜੀ
0: ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਗਾਨੇ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਕਿ ਸਹਿ ਤਿਸਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ?
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ?
1: ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ, ਮਿੰਜਰਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
0: ਚਲੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਤੇ ਲਈ ਕੇ ਜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਲੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰਾਈ ਖਰਾਈ ਕਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਔਰ ਹਮ, ਤਿਸ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੂਰਭਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਦੇ, ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ
1: ਹੁਣ,
0: ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਜੋ ਲੈਣੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਬੋ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਅਗਰ ਘਰੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇ ਉਹ ਸਹੇਜਣੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਸੈ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਗਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੜਕੀ ਬੋਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਦਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬੋਬੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਮਿੰਜਰਾ ਹੈ ਸਜੀਵ ਫੋਨਿਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਕੀ ਬੋਬੋ ਵਰਸ਼ਾ ਘਟੋਸ਼ ਕੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਲਿਖੀ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਤਿਸਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਬੋ ਭੈਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਘਟਾਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਕਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ,
2: ਹੈਲੋ,
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੌਲੇ ਤੌਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਂ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੰਡਿਆਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਡਿਆਲੀ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾ। ਦੇਖਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੋਬੋ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਵੇਲਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਥਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿਖੀ ਲਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸ ਹੈ ਸੰਭਾਲੀ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਹੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਆ ਪਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਇਕਾ ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈ ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੰਨੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀਆਂ ਦੇਖਾ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤਰੀ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਪਰ ਹੱਥ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀਏ ਮੇਰੀਏ ਭੋਲੀਏ ਪਾਲੀਏ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਲਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਏ ਨੀ, ਹੈ ਨਾ? ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਦੀਏ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਸੇ, ਹੈ ਨਾ? ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਘੜੀ ਇੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਝੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇਰ ਸੁਝੇ, ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ, ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
2: ਬਿਲਕੁਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ
0: बिल्कुल। और इसकी इतनी कदर की जाती है कि खाना तब खाने को हाथ तब डालते हैं, पहले शिक्षा पूरी होती है उसके बाद सारे बराती है जो हैं, हमारे यहाँ तो ये रिवाज
1: जरूर।
0: है
1: हाँ जी हाँ जी, जब
0: ना?
1: लगे शिक्षा पढ़ते हैं सारे, मतलब ऐसे चुपचाप उसको ध्यान से सुनते हैं।
0: हाँ,
1: हाँ जी
0: दिखा वाला कितना छैल लग गया कि बड़ा अच्छा लग गया कि तुहां अपने रीति रिवाज जेड़े अनसे संभाली के रखे हो, कने और जेड़ियां साड़ियां भैणा बोबो इसा वेला जुड़ी हैं संझकिया बेला, कने जवानदड़े भाऊ भी जुड़े होने, कने बच्चे भी जुड़े होने, तो सह सारे इस कार्यक्रम जो सुना दे होने, तो तुहां सारे जेड़े अपने रीति रिवाज हैं ना सह इं अगे चलाई रखने हैं ना, ताकि आने वाले जेड़े बच्चे हैं तिन्हें भी पता लग गया। तो एक बारी ना अपना फिरी दसी दिया
1: जी, संध्या बात करी, संध्या
0: संध्या जी, तुहाड़ा मता मता धन्यवाद आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने जुड़ने दा, कन्ने तुहां इतनी अच्छी जानकारी दित्ती, कन्ने तुहां जो अज दी डेट च भी पता है कि शिक्षा दित्ती जांदी, ए बहुत ही अच्छा लग्या सुनी के। तां इंगे
1: जी।
0: सुन
1: अभी
0: दे
1: भी देते हैं हमारे यहाँ तो, अभी भी है। अब यहाँ क्या है, मतलब जैसे हमारा जो गांव है वहां तो सारे ही देते हैं,
0: हाँ जी हाँ
1: मतलब
0: जी, साढ़े
1: जरूरी
0: इत्थू भी
1: बात
0: देंदे,
1: है।
0: साढ़े इत्थू भी देंदे ना शिक्षा, ताई
1: हाँ
0: तां मैं
1: जी
0: गला दी भी चलो जियां मैरिज पैलेस च भी तुहां

0: करते हैं ना, तमी सांझो जी ये शिक्षा है
1: मारे
0: ना।
1: तो अभी तक ऐसी सीनियर भी होती नहीं है, मतलब मारे तो जैसे कि फंक्शन की तरह होते हैं,
0: हाँ
1: जैसे
0: जी हाँ
1: मतलब
0: जी
1: ऐसी कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं होती अभी। हाँ
0: अच्छा जी,
1: जी
0: तो चलो तुहां साड़े कन्ने जुड़े कन्ने इतनी अच्छी
1: फिलहाल तो
0: जानकारी
1: ध्यान। हाँ
0: दिती, तो
1: जी
0: आड़ा मता मता धन्यवाद। इं सुनते रहे आकाशवाणी धर्मशाला।
2: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
6: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
7: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
8: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
9: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
4: बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
5: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
4: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: ता बोबो भैनो, कार्यक्रम मिंजरा च फिर ते तुहाड़ा मता मता स्वागत है। कने अज अहां गलबात करा दे कुड़िया दे ब्याह च दहेज दे रूप च दित्ती जाने वाली शिक्षा। जी हाँ बोबो भैनो, हुण घड़िया दियां सूइयां जिहड़ियां ने सै बोला दियां भी बस करा, क्योंकि टाइम होआ दा। कने इस कार्यक्रम दे तुरंत बाद समाचार आने दिल्ली ते, तां इस ते पहले मैं ये बोलना चाहूँगी बोबो भैनो, इस कार्यक्रम च अहां जिहड़ा विशे लैंदे सै ऐसा लैंदे कि जिहड़े साढ़े रीति रिवाजां कन्नै साढ़ियां संस्कारां कन्नै जिहड़ा ऐ सै जुड़िया होए। कन्नै दिखाना अहां चाहे जितने मर्जी आधुनिक होई आईए, है ना, सांझो अपना जिहड़ा जड़ है ना, जिहड़ी साढ़ी जड़ है तिसियो हाँ जो भुलना नहीं चाहिए, है ना। दिखा कुथू मंडी ते जुड़ी साड़ी बोबो भैन कन्नै सै बोला दी, अज तक अहां यह रिवाज जेड़ा मतलब साढ़े ग्राएं च सारे ही दिंदे, कितनी अच्छी गल है। सांझो ये भुलना नहीं चाहिए। ये जिहड़ी शिक्षा दी अज अहां गल करा दे इस कार्यक्रम के माध्यम से, मिंजो लगा था कि बोबो भैणा हुण बड़ियां जुड़ा दी, पर चक्कर है कि टाइम नहीं है बोबो भैनो। हुण अगले कार्यक्रम च मैं तुहाड़े ने फिर जुड़ना है कुसी और जिहड़ा विशे है तिशियो लेके, पर ये एक तुहाड़े तुहानू मैं सोचने ते विषय देता कि अगर अहां छड़ी तीओ शिक्षा देना तो कयो छड़ी तीओ, सांझो ये नहीं छड़नी है, ठीक है। कने जिन्हें दे भी कने बिटिया ने सै शिक्षा जिहड़ी है सै जरूर दिन, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, है ना। आधुनिकता का दौर तो है पर सांझो पुराने दौर च जाना पौना। कने इसी कन्नै हुण मैं तुहानू दसी दियां कि इस कार्यक्रम जो तुहाड़े तक पुजाने दा तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने, इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह, हुण अपनी बड़की बोबो वर्षक टोच जो दिया अनुमति। अच्छा जी, नमस्ते। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
10: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
11: There are countries who are emerging.
12: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
10: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
13: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: That is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान, बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: किसान साथियों कार्यक्रम अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत युवा जेडे किसान हैं सह टियाले पर आए हुए हैं, वह करदे ने इन्हां कन्ने गलबात कन्ने जानदे ने इन्हां दा नां कन्ने पता। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: तो सारे दे पहले जी अहां दे सुनने वाले अपना नां दसा, ये दसा भी तुहां कुतों दे रहने वाले ने।
1: जी मेरा नाम दीपक है
0: जी,
1: मेरे घर चीरवल्ला ने, चीरवल्ले ते आया जी।
0: अच्छा, ये चीरवल्ला कोदी है दीपक जी?
1: रैत दे थल्ले है जी, 7-8 किलोमीटर।
0: अच्छा, ब्लॉक कौन है तुहां दा?
1: रैत है ब्लॉक।
0: अच्छा, ब्लॉक रैत है। ता दीपक जी तुहां क्या कारोबार तुहां जेड़ा सा करदे ने?
1: ई साडा पोल्ट्री दा कारोबार है।
0: अच्छा, पोल्ट्री दा। ता दिखा भई जियां इतने तुहां अली युवा ने, ता तुहां दी पढ़ाई लिखाई तुहां बड़ी कर ली है भई?
1: हां जी जी, मेरी BSc कंप्लीट है।
0: अच्छा,
1: मैं अग्गे MSc कर रहा था, प्राइवेट ही कर रहा था बस।
0: अच्छा, दिखा दीपक जी बड़ी खुशी होंदी जेलु की एक युवा पढ़े लिखे किसान भी जेलु अहां कन्ने जुड़दे ने, कितनी खुशी होंदी की दिखा सब भी नौकरियां वहां जेड़ा सा ज्यादा नींद ठीक है जेड़ा सा अपना कारोबार करा कर दे ना। ता तोहां जो कुतु ते ये प्रेरणा मिली कि इतना पढ़ा लिखा होने दे बावजूद तोहां जेड़ा सा पोल्ट्री वाला काम जेड़ा सा तोहां पकड़िया?
1: ये तो पापे दी है सब कुछ।
0: अच्छा,
1: पापा पूरा स्टैंड किता बिजनेस से, पूरा कारोबार।
0: अच्छा,
1: हां जी, पहले 200-300 था।
0: हां जी,
1: चिक्स डाउन तक 2-3 फार्म ने साडे
0: जी। हां जी, ता तोहां जो कितना के टाइम होई है पोल्ट्री दा काम करदे
1: जी? पहले तो पापा की संभालिया काम, 2008 दे बनाया फार्म, पहले छोटा था ना।
0: हां जी हां जी,
1: फिर 2018-19 एक और बड़ा फार्म बनाया
0: जी। हाँ जी,
1: दो फार्म ने इस वक्त साढ़े
0: जी। हाँ जी, तो दीपक जी जी तो दसिया कि दो फार्म तो हवाल इस टाइम है ना पोल्ट्री दे, तो दोनों फार्म च इस टाइम मुर्गे पाए?
1: हाँ जी जी, दोनों फुल ने इस टाइम, एक 40-42 दिन का कन्ना, एक कल 15 दिन देना।
0: अच्छा, तो दीपक जी जी सबसे पहला गल आती ना कि यहाँ कोई भी जलू काम अहां शुरू करना है तो उस ताई हाँ जी एक सिखलाई की जरूरत पौंदी।
1: हाँ जी,
0: तो तुहां सिखलाई जिन की घर अपने पापे ते ले या तुहां कुछ होर थी भी कोई ट्रेनिंग वगैरह ले?
1: नहीं नहीं, मैं पापे ते सीखा सब कुछ ना।
0: अच्छा,
1: A to Z पापे ते पूरा।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: तो इस वक्त भी यानी कि ये गलाई सकते हैं कि तुहां जेड़े तुहां दे दोनों फार्म हैं तुहां उन्हां दा काम संभाल लंदे?
1: हाँ जी हाँ जी, संभाल लंदे, नहीं लगा पता कुछ ते पापे ते पूछ लंदे
0: जी। हाँ जी। अच्छा दीपक जी जियां दस्या ना कि दोनों फार्म विच तुहां मुर्गे पाए हुए ना,
1: हाँ जी,
0: तो इन्हां च जेड़े सा कट्ठे पाइंदे या थोड़ा गैप दे के या
1: 15-20 दिन गैप हुंदा?
0: अच्छा,
1: 20 दिन ज्यादा, 15-20 दिन दे विच गैप पाणा है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो एक ही फार्म विच कितना के मुर्गा आई जांदा? कोई
1: 21 आई जांदा, 3 कने 21 आई जांदा, 5000।
0: अच्छा, तकरीबन पे कोई 8000
1: चूजा? 7-8000 आई जांदा।
0: इस तरह तुहां लगाया हुंदा फार्मा च?
1: हां जी।
0: अच्छा जियां ए चूजे हुंदे, ए कुत्ते तुहां मंगवांदे हन या
1: ए हैचरियां ते हुंदे?
0: अच्छा,
1: ए ज्यादातर या पंजाब ते?
0: हां जी,
1: या हरियाणा ते?
0: अच्छा, ते है घर द्वार छड्डी जांदे?
1: हां जी, घर द्वार छड्डी जांदे से, चूचे पुजाई दे चिक्स छोटे छोटे से।
0: अच्छा, ए किन्ने के दिन दे हुंदे?
1: एक दिन ता हुंदा ले, उत्थों ते मशीनां ते निकले हुंदे से।
0: अच्छा,
1: अंडे ते निकले हुंदे ना?
0: हां जी,
1: एक दिन दे हुंदे से, एक दो दिन दे।
0: अच्छा, तां दा बड़ा ध्यान रखना
1: पौंदा। हां जी बिल्कुल,
0: बड़ा डब्बियां च भेजदे है?
1: हां जी, एक डब्बे च पैकिंग हुंदी 70 चूचियां दी।
0: अच्छा,
1: हां जी,
0: ते कई ते बेचारे दड़ोए भी जांदे होणे डब्बे
1: च? हां, इतनी दूर ते आउणा तां 5-6 ताईं मरी जांदे विच।
0: अच्छा अच्छा, यानी चलो एक दिन दा चलो तुहां चूजा या दो दिन दा तुहां वाले पुज्या आई के,
1: हां जी,
0: तां तिस ते बाद जेड़ा सा क्या इन्हां दे दिनचर्या क्या शुरू करदे तुहां, क्या क्या इन्हें देना खाने हो, याने दवाई कुछ आप बिना शुरू कर
1: दे? सबसे पहले तो ना होना है, ता सबसे पहले ये होंदा कि अंदर टेंपरेचर बनाना।
0: हाँ जी,
1: उन्हें गर्मी चाहिए होती ज्यादा।
0: अच्छा,
1: 90 टेंपरेचर भी रखना पौंदे ने।
0: हाँ जी,
1: सर्दियां दिन च।
0: अच्छा,
1: बड़ा मुश्किल होंदा सा है।
0: हाँ जी,
1: बाहर देखो तो 7-8 टेंपरेचर, 35-40 लेना अंदर।
0: जी जी, हाँ जी,
1: तो मुश्किल हो जाता अंदर, हीटर लगाए होंगे बलोर।
0: हाँ जी,
1: बुखारियां बड़िया बड़िया।
0: हाँ जी,
1: तो फिर इसे आना होना, पहले उन्हें दवा दू पियानी होनी, फिर छड़ देने दवा दू प्याज प्यू की, फिर शामी 2-3 घंटे फीड पाए देने, कहना फिर इं चली रहना पूरा प्रोसेस।
0: अच्छा यार, ये जड़ियाँ दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ कुत्ते लांदे तो? हाँ।

0: आए है तीसरी जलू कर दे ना कहते का तो हाँ जो जलू अहाँ दे और इतने युवा साथी अहाँ दे जलू सोना कर दे होने तेना भी प्रेरणा होवा कर दे होनी है कि अहाँ भी जरा सा कुछ ये हो दिया काम जरा सा करिए। इधर अलावा अगर गल करिए तो जी खेतीबाड़ी भी कर दे तो हाँ।
1: हाँ जी, खेती बाड़ी या सब्जी वगैरह अपने दियाँ,
0: अच्छा
1: गोभी फूल गोभी जो खाने लायक आंदी वो सही।
0: अच्छा सब्जी तो हाँ घर दी लगाई
1: हाँ
0: लेंदे
1: जी,
0: है ना।
1: खरीदी जेड़ी
0: कहते
1: आंदी।
0: देखा अगर देसी खाद की गल करिए तो
1: हाँ
0: शायद तोहां वाला अपना फार्म है
1: जी,
0: ना,
1: फार्म दी हो जाती
0: खाद
1: सर,
0: तो काफी निकलती
1: बड़ी
0: होनी।
1: गर्म होती सर, थोड़ी बहुत देना पौंदी बस।
0: अच्छा
1: हाँ
0: एक गल और कर दे कि जी ऐसे खाद इतनी भरी जी तोहां वाल बड़ा फार्म है तो जेड़ी खाद होंदी है बिठ जेड़ी होंदी है मुर्गे नहीं तो सकता पांदे वीरे।
1: सर, बिकी जाती पूरी पूरी जी।
0: अच्छा बिकी
1: हाँ
0: जाती।
1: पहले से बुकिंग हो जाती, उन्हें पहले बोल दिते होंगे किसान जेड़े हैं ना सब्जी वगैरह लगाते, बड़ी बड़ी ना गग्गल वगैरह ना जमानाबाद, तो इन्हें
0: अच्छा
1: पहले गलाई तो होंगे कि ये अंजो चाहिए है, मैल चाहिए
0: अच्छा
1: अंजो।
0: अच्छा तो सह क्या तोली के बेच दे या
1: ना ना
0: कुछ।
1: सर, गड्डी हिसाब होता है एनसी का, दो
0: अच्छा
1: हजार दी गड्डी सर
0: अच्छा
1: एनसी।
0: एनसी
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना। अच्छा यानी कि 2000 रुपये से भी बिकी जाने है
1: हाँ,
0: ना।
1: सब कुछ
0: हाँ गिलाई
1: बिकी
0: सकते कि आम और गुठलियों के भी दाम है ना
1: ना। जी हाँ जी
0: जी। अच्छा दीपक जी इससे नहीं यहाँ गल कर रहे थे खेती बाड़ी जी तो दसिया कि सब्जी तो हाँ थोड़ी बहुत अपने घर की लगाते हैं इधे अलावा जी और कणक धान छली
1: सह भी
0: वगैरह।
1: है, कणक कणक कहना छली लगाते, बस धान नहीं
0: अच्छा
1: लगाते ऐसा।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: अच्छा जी और दूध दही वाला कोई डंगर भी रखे
1: हाँ,
0: घर।
1: गाय रखी हो एक।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: एक
1: एक
0: कोई
1: गाय,
0: गाय है
1: एक ही गाय है जी।
0: दूध दिंदी होनी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा तो दूध भी तो घरे ही हो जाता
1: हाँ
0: होना
1: जी हाँ जी,
0: है ना घरे दे कमे हो।
1: हूँ तो बाहर ही लाना पौधा। हाँ जी
0: अच्छा सोने वाली
1: हाँ
0: है।
1: जी हाँ जी
0: अच्छा अच्छा तो बल अपनी जमीन तो काफी खुली होनी है
1: हाँ,
0: ना।
1: जमीन तो है 250-300 कनाल है,
0: अच्छा
1: जमीन काफ़ी है साड़ी।
0: अच्छा अच्छा तो ये सारी यानी कि इससे तो हाँ घा वगैरह बीज होता है या
1: नहीं
0: इकल।
1: नहीं का कुछ भी नहीं, उच्ची है खिली पई है सारी।
0: अच्छा
1: हाँ टालियाँ लगाइया,
0: अच्छा
1: हूँ गांव सोचे कि चंदन दे पेड़ लगाने ना,
0: हाँ जी हाँ
1: तूनी
0: जी।
1: कह चंदन दे पेड़।
0: अच्छा दीपक जी ये गल दसा कि जी हाँ दिखा पोल्ट्री का काम तो हाँ कर दिया ना अगर अहां दे नौजवान जेडे साथी है ना सह भी अगर पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहन तो सह कुतु ते यानी कि देने अच्छी की सिखलाई मिल रहा है सह कुतु ते यानी कि सह ट्रेनिंग सह लैन।
1: पहले तो उन्हें सीखना पौना कुछ, वैसे ट्रेनिंग साड़ी सरकार नवाड़ दी तरफ ते हुंदी है,
0: हाँ जी
1: साल दी से 2 बारी ट्रेनिंग करवाते ना,
0: हाँ जी
1: तो पहले उत्थों ट्रेनिंग ले लेना पौनी उन्हें।
0: जी जी हाँ
1: या
0: जी।
1: मैं तो ही बोलना चाहता कि अगर तुसा पोल्ट्री फार्म शुरू करना तो थोड़े से शुरू करा, दो
0: अच्छा
1: सौ 300 दे 500 दे, ज़्यादा बड़ा मत करा,
0: हाँ जी
1: क्योंकि इसी नुकसान भी है ता प्रॉफिट भी है।
0: जी जी हाँ जी।
1: हाँ जी
0: अच्छा दीपक जी जियाँ ये पोल्ट्री फार्म का जी तुम दसिया है
1: हाँ जी
0: नवार द्वारा जी सहायता की जाती है
1: जी
0: ये ताइया तो चलो ये अपने फार्म वगैरह बनाए थे तो भी कोई अनुदान राशि वगैरह सहायता कभी ले
1: जी
0: कुछ।
1: असा लोन लिया था बैंक ते ना
0: अच्छा
1: नवाड़ की तरफ ते,
0: अच्छा
1: ता साड़ा था 30-35 लाख का लोन लिया था सा, तो
0: अच्छा
1: सब्सिडी थी उच्ची
0: अच्छा अच्छा
1: घट ही मिली ही।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: कर्जा ले करी भी जेड़ा सा अहां दे नौजवान साथी जेड़े
1: हाँ
0: सा
1: जी हाँ
0: इस
1: जी
0: कम में शुरू कर
1: हाँ
0: सकते
1: जी
0: हैं
1: बिल्कुल जी
0: बशर्ते ये होना चाहिए कि तेना अंदर एक प्रेरणा होना चाहिए कि यहाँ भी जेड़ा सा काम जेड़ा सा करिए ना।
1: हाँ जी
0: अच्छा दीपक जी दा इस ते सोगी दिखा तो हाँ अहां दे टियाले पर आए अपने अनुभव तो हाँ अहां कन्ने जेड़े सा इत्थों साझा किते अहां दे जेड़े बेरोजगार जेड़े युवा हैं जेड़े तां तू नौकरियां बहां नठा दे नौकरियां तोपा कर दे करें नी भी मिला कर दियां तो तेने ये तो टियाले दे माध्यम ते क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: नहीं, मैं तो ये बोलना चाहता, नौकरी नाकरी जी कुछ नहीं रख्या,
0: हाँ
1: अपना
0: जी
1: कारोबार खोला,
0: जी जी
1: बड़ा छोटा करा, छोटे थे फिर हल्के हल्के बदना, पूरा
0: हाँ जी
1: स्टार्टअप खोला कोई भी छोटा मोटा कारोबार,
0: जी
1: अपने कम में जी कुछ मजा है कुछ अलग है।
0: जी
1: हाँ जी
0: ता दीपक पटियाल जी दिखा तो हाँ अपना कीमती समय निकाली के अहाँ दे टियाले पर इतू आए अपने तो हाँ खेतीबाड़ी दे अपना पोल्ट्री फार्म दे जड़ा तो हाँ काम कर दे अनुभव अहाँ कन्ने साझा किते तो हाँ ता बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान साथियों अहाँ सुनी ये भेंट वार्ता कने जी कि तुम जो मैं पहले भी दस्या हा कि अहाँ दे किसान साथियाँ अपने खेतीबाड़ी दे कम में सोगी कई तरह दे होर भी ऐसे कम धंधे तिना अपनी रोजगार चलाने तइयां अपनाए होंगे ता तिही जी जियाँ कि अहाँ टैर के माध्यम से हर दिन जरा सा यही संदेश तो जो दें कि विज्ञानिक कृषि विज्ञानिक जड़े हैं कृषि विशेषज्ञ हैं सह अहाँ दी जड़े सह सहायता वास्ते विभाग च जड़े सह उतो दफ्तर होंगे ने हाँ जो चाहिए कि तिना दे संपर्क विच रही के तिना ते पूरी जानकारी ले के अहाँ अपने जड़े भी काम काज हैं खेतीबाड़ी दे अपने पशु पालन दे ये सारे ही बागवानी दे होइए अहाँ उस हिसाबे कन्नै करने हैं। इसते सोगी ही एक बागवानी ते जड़ा सा एक गल होर मुझे याद आई है कि किसान साथियों अहाँ जितने भी बागवान साथी हैं ना ਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹਾਂ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ

किसान साथियों, इसी प्यारे दे लोक गीत करने कार्यक्रम खेतीबाड़ी का समय इतों ही संपन्न होने जो है। तकनीकी सहयोग अहां दिता सुरेंद्र कपूर ने, कने कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण किसान मित्र जो दिया अनुमति। अच्छा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1-9-1-2।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1-9-1-2 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा

0: प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा, विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी पार्टी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र की वित्तीय मदद को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। नई दिल्ली में पेंशन अदालत में कल वरिष्ठतम पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों का होगा समाधान। और राष्ट्रपति के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित दौरे के चलते बिलासपुर व कुल्लू जिलों में विशेष यातायात प्रबंध लागू। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अपनी उपलब्ध भूमि और संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर आय के स्थायी साधन विकसित करने चाहिए। शिमला जिला के चमियाना में आज खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। अनिरुद्ध सिंह ने युवाओं को खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से चमियाना स्कूल को CBSE स्कूल के रूप में शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हमीरपुर में आज भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठन प्रत्येक सीट पर जीत के लक्ष्य के साथ काम करेगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश के 8,007 बूथों पर संगठन को मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सह प्रभारी दर्शना सिंह ने कांग्रेस पर परिवार केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है। बैठक में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही चुनावी वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और भाजपा को अभी से पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी बैठक को संबोधित किया। भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज को संसद की महत्वपूर्ण रक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। भारद्वाज ने कहा कि समिति के सदस्य के रूप में वे अपने दायित्व का पूरी निष्ठा, गंभीरता और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर केंद्र की वित्तीय मदद को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के भरपूर सहयोग से ही आज राज्य में विकास कार्य संभव हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए केंद्र का आभार तक नहीं जता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जो व्यापक जाल बिछ रहा है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में 4-लेन सड़कों का नेटवर्क बिछाया जा रहा है जिससे सफर काफी आरामदायक हो गया है। केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रस्तावित 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का 100% अवार्ड घोषित किया जा चुका है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में अब तक करीब 2,285 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
1: कांगड़ा एयरपोर्ट ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसकी एक्सपेंशन जो कि 1376 मीटर जो हमारी एयर स्ट्रिप है उससे बढ़कर 3010 मीटर की जानी है। ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। हमारी जितनी लैंड एक्विजिशन अवार्ड है वो 100% डिक्लेयर कर दिए गए हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर द्वारा। उसमें लगभग 2285 करोड़ रुपया लैंड कंपनसेशन का दिया भी जा चुका है जितने बेनिफिशियरी है इसके। साथ में 14 मोहालों में जो लगभग 13 मोहाल का R&R अवार्ड भी घोषित किया जा चुका है उसमें लगभग 180 करोड़ R&R अमाउंट है वो भी डिस्पर्स किया जा चुका है। वो प्रोसेस कंटिन्यूड है। ऑलमोस्ट 150 करोड़ की और डिमांड जो है वो सरकार के पास भेजी गई है।
0: उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत मांझी खड्ड पर प्रस्तावित पुल के निर्माण को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच चर्चा जारी है। ताजा समाचारों के लिए आप

0: हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
2: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
1: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
2: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
3: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई,
5: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शेष समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पिछले 12 वर्षों में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार उनकी सरकार के प्रयासों से जंगलों में सक्रिय सशस्त्र माओवादी हिंसा और आतंकवादी काफी हद तक समाप्त हो चुका है।
6: ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक बिलासपुर और कुल्लू जिले में मनाली और अटल टनल प्रवास के चलते विशेष यातायात प्रबंध लागू किए गए हैं। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति के बिलासपुर में एम्स दौरे को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिले में दोनों दिशाओं से आने जाने वाले वाहनों को घाघस चौक से कंदरौर, बघेड़, ओहर, ऋषिकेश, भराड़ी, ओपन एयर जेल जबली मार्ग से वाहनों को भेजा जाएगा। उधर कुल्लू जिले में 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिंबा मंदिर व ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। पीएम सेतु योजना ने आज अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत उन्नत ITI के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
7: पीएम सेतु योजना का उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर दिया

0: भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा, विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी पार्टी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र की वित्तीय मदद को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। नई दिल्ली में पेंशन अदालत में कल वरिष्ठतम पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों का होगा समाधान। और राष्ट्रपति के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित दौरे के चलते बिलासपुर व कुल्लू जिलों में विशेष यातायात प्रबंध लागू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग में MLT अर्थात मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 18 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। ये पद जॉब ट्रेनिंग के आधार पर भरे जाएंगे। पदों का विवरण इस प्रकार से है। सामान्य श्रेणी के 9 पद, सामान्य श्रेणी EWS का 1 पद, सामान्य श्रेणी WFF का 1 पद, अनुसूचित जाति के 5 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद भरे जाने हैं। आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। आवेदक ने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10:2 की परीक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी संस्थान से BSc MLT अथवा BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिग्री प्राप्त की हो। उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। वांछनीय योग्यताओं में आवेदक को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, रहन सहन व बोलियों का ज्ञान होना अनिवार्य है और साथ ही प्रदेश में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने की दक्षता होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 15 अक्टूबर 2026 और जनजातीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.hphealth.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि सबरस कार्यक्रम में हम विविध रंग जो हैं वो भरते हैं, तो चलिए आप सभी श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और

अभी आपने सुना अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई इस गजल को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही पंजाबी गीत।

0: राजनीति है। आ जा।
1: की हो गया?
2: बेबे मैं ते ना तू तंग आ।
1: क्यों? की होया?
2: बेबे पता नहीं केड़िया फ्रेंडा ने इना दिया जिन्हां नाल फोन ते हस हस के गल्लां करदे रहंदे ने। वेले इक वेले उन्हां नूं मिलन तुर जांदे ने। बेबे मैं लख कोशिश कीती कि मैं शक ना करां पर हुण बंदे नूं शक हो ही जांदा है।
1: मियां
2: खसमां नूं खाणा
1: पीए बंदे ते तीवी दा झगड़ा तां मुंड कदीम तोरिया है। नाल केड़ी जनानी है जिहड़ी आपदे खसम तों सुखी है? नहीं क्यों संतिए?
3: आहो बेबे मैं तां रोज झांबी लाउनी आ मोया डट वांग बोतल ची वड़िया रहिंदा बुच्चड़ जिहा किसे थां दा।
4: दो महीने हो गए मैं तां इन्हां नूं बुलाउणा ही छड़ता।
1: सब कुछ ठीक ठाक हो जूगा तू एक गाना सुन तेरा मूड ठीक हो जू। नहीं निकिए
3: बना
1: दिए डिस्को।

0: ਉਹ ਸ਼ਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ
1: अभी आपने सुना दिलजीत दोसांझ व साथियों की आवाज़ों में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इलारून की आवाज़ में गाया ये गैर फिल्मी गीत।

अभी आपने सुना इलारून की आवाज़ में गाया ये गैर फिल्मी गीत, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा उद्धव साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत।

अब आपने सुना उषा उद्धव व साथियों की आवाजों में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सवरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अभी आपने सुना कलेरकंठ की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सवरस अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहा है।

0: दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
0: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
0: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
1: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
0: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
0: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
0: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
0: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
0: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85

0: पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने

0: कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है, जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
2: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
2: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
4: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। श्रोताओं, जेपी दत्ता यानी ज्योति प्रकाश दत्ता हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक

चक लेखक और निर्माता हैं, जिन्हें मुख्य रूप से उनकी देशभक्ति और युद्ध पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 3 अक्टूबर सन 1949 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओपी दत्ता भी एक जाने माने फिल्म लेखक थे। उनका विवाह पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी से हुआ है। उनकी दो बेटियां निधि दत्ता और सिद्धि दत्ता हैं, जिनमें से निधि दत्ता भी फिल्म निर्माण और लेखन से जुड़ी हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इस कड़ी में आज आपने सुना निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।
2: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
3: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं, बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
2: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
3: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
2: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
3: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
4: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ की डेथ हो गई।
5: माय नेम इज कृष्णा विश्वास। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी एंड लाइक टू स्टोरी बुक।
6: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौदह से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात रात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते हैं, सब खुश रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वहाँ डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाने सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता।
7: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ। स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूँगी, मैं खुश रहूँगी।
8: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले तो नहीं रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।

0: दस्तखत कर गई। मैं भुलावे कऊ बटन हिमल तारा, कौन से रास्ते जान किस मोड़ पर, कब बिछड़ कर मेरा पाकपन रह गया। पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ, बस गई उम्र का आकलन रह गया। पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ, पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार

0: सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
1: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में, कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जैसे लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है, कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
2: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं?
0: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
2: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है, और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
3: मेरा नाम नसरत भगत है, मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में ये हम लोगों का एक मनोरंजन होता है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
2: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है, और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहां मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
1: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो धीरे की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव का रोल होता है, जो एक दो

0: दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है, माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
1: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
1: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है। बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं। यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा।
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
3: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है, ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है, वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है, तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
2: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फेटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान,
0: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है, और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए, तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती है, तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है, तो फिर आपको याद भी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। कुछ चीजें आप रखिए फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो, ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये, तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ। एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
2: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
1: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
2: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
1: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
2: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहाँ के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800-89-14416। और अच्छी बात यह है कि ये सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
2: आंकड़े जरूरी हैं, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
1: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड, रियल वॉइसेस, रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
2: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है। जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
1: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
2: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
1: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
2: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
1: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाए, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
2: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
1: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए ऐसी हमारी कामना है।
5: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
6: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंटसे का शास्त्रीय गायन।
7: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंटसे।
6: श्री हिंडोल पेंटसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंटसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत, भक्ति गीत, नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों, धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंट से अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंटसे।
7: हिंडोल पेंटसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, ही हैड हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग इन रिच म्यूजिकल एनवायरमेंट एट होम फ्रॉम हिज फादर एंड गुरु श्री सदानंद पेंटसे। हिज सिंगिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीप कमिटमेंट टू रागदारी with a particular emphasis on his traditional form and aesthetic beauty. He has performed at number of prestigious musical and cultural events. He is also known for background music for films, serials and Mahanatya. Hindol Pendse begins his vocal recital with Raag Bihag. Vilambit Khayal Kavana Dhanga Tora is set to Ektal and Drut Khayal Bajere Mori Payal is set to Teental. Accompanied him on tabla is Ajinkya Galande and on harmonium Narayan Darekar. Let's listen to Raag Bihag by Hindol Pendse.

0: पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ एक कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार एक गोल्ड और एक सिल्वर समेत दो पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया
0: मोना। 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां-6ठा स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
1: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
0: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
1: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
0: तीरंदाजी में मुना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
1: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
0: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
1: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत

0: को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है
1: जी। और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार 1 ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो 1 गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही है। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए, तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: मिनीवे 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। आइए शुरुआत करते हैं नूरी फिल्म के गीत के साथ, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में।

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: That was Raag Bihag. Hindol Pindse conclude his vocal recital with Raag Madhukons. Madhyalay Khayal, Deho Daras Moheram is set to Jhaptal, followed by Drut Khayal, Aajare, Aajare, Patikava in Tintal.

0: ये था राग मधुकौंज। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was राग मधुकौंज। With this, tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by Shri Hindol Pense. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Darekar. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है।